एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा

0: पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन भगवान हम भक्तों के तारनहार ही नहीं, सच्चे पथ प्रदर्शक भी हैं, क्योंकि वे केवल संकटों से ही नहीं बचाते बल्कि जीवन को सही दिशा भी देते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसके भीतर विश्वास, साहस और शांति का संचार होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना भी है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन श्रद्धा से भरा हृदय उन्हें पार करने की शक्ति पा लेता है। ईश्वर कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमें आशा, धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की।

पवित्रता, श्रद्धा और आरोग्य की प्रतीक माने जाने वाली माँ तुलसी की महिमा अपरंपार है। माँ तुलसी का वास जहाँ होता है वहाँ सुख, शांति और सकारात्मकता का निवास होता है। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी माता की पूजा से घर आंगन ही नहीं बल्कि मन भी पवित्र और भक्तिमय बन जाता है।

भक्ति रसपान इस समय आप कर रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, कार्यक्रम है वंदना।

जब माता रानी का बुलावा आता है तो केवल शब्द कदमों को नहीं हृदय को भी माँ की शरण में ले जाता है, और जब माँ की कृपा होती है तब भक्त का मन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के रंग में रंग जाता है।

भगवान शिव का नाम स्वयं में एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय का स्मरण मन को शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हृदय में शिव का वास हो तो भय दूर हो जाता है और जीवन में विश्वास का प्रकाश फैलने लगता है। आइए शिव महिमा का गुणगान करें इस भजन के साथ।

श्रोताओं, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजड़ों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह की 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आप लुत्फ उठाएंगे कार्यक्रम गाने सुहाने का। 9:00 श्रोता सुन सकते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। 10:00 कार्यक्रम गीतों का कारवां प्रसारित किया जाएगा। पहाड़ों की सुर हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। 11:00 प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं जिन्हें आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 11:05 पर आज श्रोता एक भेंटवार्ता सुनेंगे। संजीव शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं ये, इनके साथ भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। वार्ताकार है वंदना रैना और विषय रहेगा केंद्र की सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। ये भेंटवार्ता 11:05 से 11:30 तक आप सुनेंगे। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए दोपहर 12:00 लेकर हाजिर होंगे। 12:30 पर सखियां सुनना न भूलें अपना कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:00 समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का जिन्हें आकाशवाणी मुंबई से रिले किया जाएगा। इसी दौरान दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। 5:00 तक विविध भारती के कार्यक्रमों से आप जुड़े रहेंगे। 5:00 समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से जिन्हें रिले किया जाएगा। शाम 5:10 पर आज आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण विज्ञान भवन नई दिल्ली से। इस कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। 5:30 पर युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुनेंगे। 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। मौजा गराइंदिया ये कार्यक्रम शाम 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुने जा सकते हैं। 7:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप एक बार फिर सुन सकते हैं शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से। रात 8:00 विविध संगीत का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल पत्रिका रिले किया जाएगा। 10:00 नई फिल्मों से गीत आप सुन

सकते हैं, कार्यक्रम होगा बॉलीवुड बीट्स और 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। सभा के अंत में आप समाचार सुन सकते हैं 11:00 हिंदी में, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:55 होने को हैं आपसे कुछ देर में, पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: तोषक कुमार सारंगी न्यगादीत यदृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी

पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी में सभी श्रोताओं का स्वागत। कार्यक्रम है सुबह सुहानी और मैं हूं आपकी अपनी आरजे होस्ट एंड दोस्त जानी पहचानी नीलम। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम आप मेरे साथ सुनेंगे और कार्यक्रम में हम खूब सारा एंटरटेनमेंट करेंगे आपका और जानकारियां भी साझा करेंगे। श्रोताओं, कभी कभी सुबह हमें जगाती नहीं, हमें याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ सपने पूरे करने हैं, अपनों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है और कुछ मुस्कुराहटें हमें अभी और बांटनी है। तो आइए आज की शुरुआत शिकायतों से नहीं, शुक्रिया से करते हैं। शुक्रिया उस जीवन का जो हमें हर दिन एक नया पन्ना लिखने का मौका देता है। शुक्रिया उन रिश्तों का जो हमारी खुशियों को मायने देते हैं और शुक्रिया उन उम्मीदों का जो हर सुबह हमारे दिल में फिर से जन्म लेती हैं और हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। चलिए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपकी इस प्यारी सी खूबसूरत सी सुहानी सुबह को और सुहाना और खूबसूरत बनाते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, सुबह सुहानी और कार्यक्रम भी है सुबह सुहानी। आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ आप जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज क्या कुछ होगा आपको बताते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार साझा करेंगे आपके साथ, फिर झांकेंगे इतिहास के झरोखे में, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं आज के दिवस उनके बारे में बात होगी, उसके बाद सुनेंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरें, अंत में जानेंगे मौसम का हाल। तो आइए साझा करते हैं आज का सुविचार आपके साथ। श्रोताओ, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, इसलिए अतीत में अटकने के बजाय हमें भी आगे बढ़ना सीखना है। बीते हुए कल से सिर्फ सीख लेनी है, लेकिन उसमें जीना नहीं है। जी हाँ श्रोताओ, जिंदगी बिल्कुल एक सफर की तरह है। सफर में गाड़ी चलाते समय हम रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ पीछे नजर रखने के लिए। लेकिन गाड़ी हमेशा विंडशील्ड यानी आगे का रास्ता देखकर ही चलाई जाती है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी बीते हुए कल को बार बार याद करके रुक जाना शायद समझदारी नहीं है। जो गलतियां हुई उनसे सीख लीजिए, जो यादें अच्छी हैं उन्हें सहेज कर रख लीजिए, लेकिन अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं लोगों का होता है जो उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस सुविचार को अपने जीवन में उतारेंगे, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें आगे ही बढ़ते रहना है। हम भी कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, हर तारीख अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे होती है। समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन इतिहास उन पलों को सहेज कर रखता है जिन्होंने दुनिया को किसी न किसी रूप में बदल दिया। आइए समय किसी सफर में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं आज का यानी 19 जून का इतिहास, और 19 जून के इतिहास के पन्नों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई, किन महान हस्तियों के जन्म और किन महान हस्तियों ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, बात करें साल 1910 की, तो दुनिया में पहला आधिकारिक फादर्स डे यानी पितृ दिवस आज के दिन मनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पोकेन शहर में ये मनाया गया था, और इसकी शुरुआत सोनोरा स्मार्ट डोड नाम की महिला द्वारा अपने पिता को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई थी। साल 1934 में अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC की स्थापना हुई, जिसने प्रसारण और संचार व्यवस्था को नया रूप दिया। भारत ने अपने भूस्थैतिक उपग्रह एप्पल का सफल प्रक्षेपण भी आज ही के दिन किया, साल 1981 में। अब बात करते हैं उन खास हस्तियों की जिनके आज के दिन जन्म हुए। मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का आज के दिन साल 1947 में जन्म हुआ। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कई वर्ष तक संघर्ष करने वाली और दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आन सांग सूची, जिन्हें म्यांमार की लोह महिला के रूप में भी जाना जाता है, आज के दिन 19 जून के दिन साल 1945 में इनका जन्म हुआ। बहुमुखी प्रतिभा से धनी अभिनेता आशीष विद्यार्थी हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में अपने दमदार किरदार के लिए इन्हें जाना जाता है। 19 जून साल 1965 में इनका जन्म हुआ। उन्हें फिल्म द्रोहकाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी आज ही के दिन जन्मी हैं। इन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है। साल 1985 में आज के दिन इनका जन्म हुआ है। तो आज के दिन निधन हुआ जिन खास हस्तियों का, उनके बारे में बात करते हैं। साल 1981 में निधन हुआ डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और चिकित्सक थे, जिन्होंने भारत में IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का इन्हें अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1978 में उन्होंने भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उस समय एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश उनके कार्य को तत्काल उचित मान्यता नहीं मिली, लेकिन बाद में उनके योगदान को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया। आज उन्हें भारत में प्रजनन चिकित्सा के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिना जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम गोल्डिंग का निधन साल 1993 में आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों, इतिहास की यह झलक हमें बताती है कि हर तारीख अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे रहती है, कुछ प्रेरणाएं देती है, कुछ सीख और कुछ याद दिलाती है कि समय कभी रुकता नहीं। अब कार्यक्रम सुबह सुहानी में भी हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुबह सुहानी और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ नीलम, आपकी होस्ट एंड दोस्त जानी पहचानी। कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे ऐसे दिवस हैं जो मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में बात करते हैं श्रोताओं, जो खास दिवस आज मनाया जा रहा है उसके बारे में। श्रोताओं, क्या कभी आपने बिना घड़ी देखे, बिना किसी मंजिल के बस यूं ही टहलने का आनंद लिया है? अगर नहीं लिया है तो आज यानी 19 जून को विश्व सैर दिवस आपको यही याद दिलाता है कि आज आप सैर करें और हर दिन सैर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस दिन की शुरुआत साल 1979 में हुई थी, जब लोगों की भागदौड़ और जॉगिंग के बढ़ते क्रेज के बीच ये संदेश दिया गया कि कभी कभी धीरे चलना भी जरूरी है। धीरे चलना, टहलना, इसका मतलब आराम से मुस्कुराते हुए और आसपास की दुनिया को महसूस करते हुए चलना, यानी जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, कभी कभी ठहर कर नजारों का आनंद लेने का भी नाम है। आज जरा कदम धीमे रखिए, क्योंकि कुछ खूबसूरत मंजिलें दौड़कर नहीं, टहल कर देखी जाती हैं। श्रोताओं, पढ़ना केवल जानकारी हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक तरह की मानसिक कसरत भी मानी जाती है। राष्ट्रीय पठन दिवस आज मनाया जा रहा है और हर साल भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पुस्तकालय आंदोलन की जनक P.N. पन्नीकर की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। शोध बताते हैं कि नियमित पढ़ने की आदत न केवल शब्द भंडार बढ़ाती है, बल्कि कल्पना शक्ति, एकाग्रता और सहानुभूति की भावना को भी मजबूत बनाती है। एक अच्छी किताब आपको बिना टिकट दुनिया के किसी भी कोने की यात्रा करवा सकती है। यही पढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। किताबें वो खिड़कियां हैं जो बैठे बैठे दुनिया की सैर करा देती हैं। तो अपनी

0: है। इस दिवस का उद्देश्य पीड़ितों के साहस को सम्मान देना और न्याय की आवाज को मजबूत करना है। ये दिन हमें बताता है कि शांति केवल हथियारों के शांत होने से नहीं बल्कि मानव गरिमा की रक्षा से स्थापित होती है। सच्ची जीत वही है जहां इंसानियत सुरक्षित रहे। तो इंसानियत अगर सुरक्षित है तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य सफल हो सकता है। कार्यक्रम में श्रोताओं और भी दिवस जो हम मना रहे हैं उनके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद आज की खबरें आपके साथ साझा की जाएंगी और मौसम पर नजर डाली जाएगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक बार फिर से आपके मनोरंजन का।
1: हाय

कभी आसमां के सितारों में लहरा रही थी ये जलवा ये नखरा ये जलवा ये नखरा।

उल्लू बन के इन्हीं बादलों के तले हम हमारे

कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानकारी के सिलसिले को इसे आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल और लचीली होती हैं, लेकिन सिकल सेल रोग में ये हंसी यानी जिसे आम भाषा में हम दराती कहते हैं, सिकल जैसी आकृति की हो जाती हैं। यही छोटा सा बदलाव शरीर में रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। 19 जून को यानी आज मनाया जाने वाला विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस केवल एक बीमारी के बारे में जानकारी देने का दिन नहीं, बल्कि समय पर जाँच, जागरूकता और बेहतर देखभाल के महत्व को समझने का अवसर है। ये हमें दिलाता है कि सही जानकारी कई बार सबसे प्रभावी उपचार की शुरुआत बन सकती है। जागरूकता की एक किरण स्वास्थ्य की नई उम्मीद जगा सकती है। विश्व पारंपरिक सांस्कृतिक दिवस भी मना रहे हैं, वर्ल्ड एथनिक डे। श्रोताओं, किसी भी क्षेत्र की पहचान उसके नक्शे से कम और उसकी परंपराओं, वेशभूषा, लोकगीतों और खानपान से ज्यादा होती है। विश्व पारंपरिक सांस्कृतिक दिवस हमें इसी विविधता का उत्सव मनाने का अवसर देता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कई लोक परंपराएं सदियों तक केवल मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची, बिना किसी किताब या इंटरनेट के। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता की दौड़ में अपने

सांस्कृतिक जड़ों को संजो कर रखना भी उतना ही जरूरी है। परंपराएं अतीत की याद नहीं, भविष्य की पहचान होती हैं। एक और दिवस की बात श्रोताओं अब करेंगे। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि कभी कभी आज़ादी मिल जाने के बाद भी उसकी खबर लोगों तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। जुनटिंथ इसी अनोखे इतिहास की याद दिलाता है। 19 जून यानी आज साल 1965 को अमेरिका के टेक्सास में गुलाम बनाए गए अफ्रीकी मूल के लोगों को आधिकारिक रूप से उनकी स्वतंत्रता की जानकारी दी गई थी, जबकि दास प्रथा समाप्त होने की घोषणा इससे लगभग 2.5 वर्ष पहले हो चुकी थी। इसलिए जुनटिंथ केवल आज़ादी का उत्सव नहीं बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि अधिकार तभी मायने रखते हैं जब उनकी जानकारी और लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी के आखिर में अब हम पहुंचे हैं और अब बात करते हैं आज की खबरों की। प्रधानमंत्री ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता की और व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राज्यों के किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा में आज से ब्रिक्स MSME फोरम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। फुटबॉल विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के मुकाबले जारी हैं और दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें आज होने वाले मैच पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशन कप में भारत ने उर्गिव को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत आज दर्ज की। अब जानते हैं मौसम का हाल। श्रोताओं, पूरे भारत में मौसम देश के कई हिस्सों में मौसम जो है वो अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं मानसून की फुहारें राह दे रही हैं तो कहीं बादल, तेज हवाएं और गरज चमक मौसम को रोमांचक बना रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। हिमाचल के मौसम की बात करें तो हिमाचल ने मौसम में एक बार फिर करवट ली है। कई इलाकों में हुई बारिश से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। धर्मशाला के आसपास के इलाकों के मौसम की बात करें तो आज बादलों और धूप की लुका छिपी देखने को मिल सकती है। दिन के दौरान कहीं कहीं हल्की और मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम सुहावना बना रहेगा। तो अगर आप आज घर से निकल रहे हैं तो छाता साथ रखना ना भूलिएगा, क्योंकि मौसम का मिजाज आज थोड़ा शायराना है। कभी धूप की मुस्कान है तो कभी बादलों की मेहरबानी रहेगी। कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज श्रोताओं बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 18वां अध्याय, रंग भेद। मुझे गुस्सा आया पर मैंने उसे रोक लिया। मैंने सोचा यदि मैंने अब्दुल्ला सेठ का ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होता तो उसकी अवगणना की जाती और गोरे का परिचय पत्र मांगा जाता। इसके सिवा मेरे जन्म के साथ वकालत की मेरी योग्यता का क्या संबंध हो सकता है? यदि मैं दुष्ट अथवा कंगाल माता पिता का लड़का हूं तो मेरी योग्यता की जांच करते समय मेरे विरुद्ध उसका उपयोग क्यों किया जाए? पर इन सब विचारों को अंकुश में रखकर मैंने जवाब दिया, यद्यपि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि ये सब तथ्य मांगने का वकील सभा को अधिकार है, फिर भी आप जैसा चाहते हैं वैसा शपथ पत्र प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब्दुल्ला सेठ का शपथ पत्र तैयार किया और उसे वकील को दिया। उन्होंने संतोष प्रकट किया पर वकील सभा को संतोष ना हुआ। उसने मेरे प्रवेश के विरुद्ध अपना विरोध न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मिस्टर एस्कम्ब का जवाब सुने बिना ही वकील सभा का विरोध रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रार्थी के असल प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने की दलील में कोई सार नहीं है। यदि उसने झूठी शपथ ली होगी तो उसके लिए उस पर झूठी शपथ का फौजदारी मुकदमा चल सकेगा और उसका नाम वकीलों की सूची में से निकाल दिया जाएगा। न्यायालय के नियमों में काले गोरे का भेद नहीं है। हमें मिस्टर गांधी को वकालत करने से रोकने का अधिकार नहीं है। उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मिस्टर गांधी, आप शपथ ले सकते हैं। मैं उठा। रजिस्ट्रार के सम्मुख मैंने शपथ ली। शपथ लेते ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अब आपको अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए। एक वकील के नाते वकीलों से संबंध रखने वाले न्यायालय के पोशाक विषयक नियम का पालन आपके लिए भी आवश्यक है। मैं अपनी मर्यादा समझ गया। डर्बन के मजिस्ट्रेट की कचहरी में जिस पगड़ी को पहने रहने का मैंने आग्रह रखा था उसे मैंने वहां उतार दिया। उतारने के विरुद्ध दलील तो थी ही पर मुझे बड़ी लड़ाइयां लड़नी थीं। पगड़ी पहने रहने का हठ करने में मुझे लड़ने की अपनी कला समाप्त नहीं करनी थी। इससे तो शायद उसे बट्टा ही लगता। अब्दुल्ला सेठ को और दूसरे मित्रों को मेरी यह नरमी या निर्बलता अच्छी ना लगी। उनका ख्याल था कि मुझे वकील के नाते भी पगड़ी पहने रहने का आग्रह रखना चाहिए था।

मैंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, जैसा देश वैसा भेष, इस कहावत का रहस्य समझाया और कहा, हिंदुस्तान में गोरे अफसर या जज पगड़ी उतारने के लिए विवश करें तो उसका विरोध किया जा सकता है। नेटाल जैसे देश में और यहाँ के न्यायालय के एक अधिकारी के नाते न्यायालय की रीति नीति का ऐसा विरोध करना मुझे शोभा नहीं देता। इस और ऐसी दूसरी दलीलों से मैंने मित्रों को कुछ शांत तो किया, पर मैं नहीं मानता कि एक ही वस्तु को भिन्न परिस्थिति में भिन्न रीति से देखने का औचित्य मैं इस अवसर पर उन्हें संतोषजनक रीति से समझा सका था। पर मेरे जीवन में आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ साथ ही चलते रहे हैं। सत्याग्रह में यह अनिवार्य है। इसका अनुभव मैंने बाद में कई बार किया है। इस समझौता वृत्ति के कारण मुझे कितनी ही बार अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ा है और मित्रों का असंतोष सहना पड़ा है। पर सत्य वज्र के समान कठिन है और कमल के समान कोमल है। वकील सभा के विरोध ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे लिए दूसरे विज्ञापन का काम किया। ज्यादातर अखबारों ने मेरे प्रवेश के विरोध की निंदा की और वकीलों पर ईर्ष्या का दोष लगाया। इस विज्ञापन से मेरा काम किसी हद तक सरल हो गया।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, स्वर संजीव कुमार, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। अब एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के साथ इस समय आप बने हुए हैं। अब लीजिए सुनिए ये राम भजन।

अभी आप सुन रहे थे ये राम भजन आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। हम बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। अब लीजिए सुनिए ये देशगान।

सुबह के 8 बजने को है कुछ ही देर में पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: इतना प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2

0: दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर

0: भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश

स्वागत। कार्यक्रम है गाने सुहाने, जहां चले आते हैं हम आपको कुछ नगमे सुनवाने। और ये नगमे होते हैं कभी नए कभी पुराने। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक के कुछ सुहाने से गीत, जो उम्मीद करेंगे आपके दिल को छू जाएं। दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर फरमाया है कि दुनिया की कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देती, लेकिन असर गहरा छोड़ जाती हैं। जैसे किसी की मुस्कान, किसी की दुआ और एक अच्छा सा प्यारा सा गीत। तो अब से लेकर 9 बजे तक आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे गीत सुनवाने की जो आपके कानों के साथ साथ सीधे दिल तक अपना रास्ता बना लें। पायल फिल्म का ये गीत साधना सरगम कुमार सानू की आवाजों में। ये खूबसूरत सी धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने और इस गीत को लिखा है समीर ने।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। दोस्तों, जिंदगी अगर एक किताब होती तो जो म्यूजिक है यानी संगीत है वो उसके सबसे खूबसूरत चैप्टर्स में से एक होता, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ पन्ने हैं जिनमें कुछ गीत हैं जो हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, कुछ हौसला देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बरसों पुरानी यादों को अचानक सामने ले आते हैं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक गीत और आपको सुनवाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आए।

0: साधना सरगम मोहम्मद अजीज की खूबसूरत सी आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा घर जवाई फिल्म से।
1: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गान

सुहानी। दोस्तों, कभी सोचा है अगर दुनिया में संगीत ना होता तो शायद हमारी खुशियां थोड़ी कम रंगीन होती और हमारे गम हमें थोड़ा ज्यादा भारी लगते। संगीत यानी म्यूजिक जो है हमें हर टेंशन से बचा कर रखता है, यानी जब हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है और हम अच्छा सा संगीत सुन लेते हैं तो वो टेंशन कोसों दूर भाग जाती है और हम हल्का सा महसूस करते हैं। एक और गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, एंजॉय कीजिए इस गीत को।

हम शक्ल फिल्म का ये गीत है। ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और आवाजों से सजाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने।

गाने सुहाने ये कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में आगे बात करते हैं श्रोताओं। गाने सुहाने में हम 90 के दशक के गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये गीत आपको सुनने में मज़ेदार लग रहे होंगे। श्रोताओं, सुकून की कोई दुकान नहीं होती और अगर होती तो उसका नाम बेशक संगीत होता, क्योंकि संगीत कानों में पड़ते ही एक अद्भुत सा सुकून दे जाता है। और जिन यादों की हमारे पास कोई तस्वीर नहीं होती, किसी न किसी गीत से वो यादें जुड़ी होती हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। अपराधी फिल्म का ये गीत है, अलका याग्निक की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सजाया है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है।

दोस्तों अब वक्त है इस संगीत भरी मुलाकात को विराम देने का। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी दोस्त एंड होस्ट नीलम के साथ। याद रखिए, जिंदगी हर रोज कोई बड़ा मौका नहीं देती, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का मौका जरूर देती है। इसीलिए आज के इस दिन को खुलकर जिए, अच्छे विचारों को जगह दें और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज ना करें। इसी खूबसूरत सोच के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम से अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह के 9 बजे हैं, अब लीजिए हाजिर हैं हम लेकर के कार्यक्रम जनवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी में आप सबका स्वागत है। अगर हम कहें धरती पर इस जीवन की कहानी, इसे साकार करता है पानी, तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, ये वही पानी है जो बादलों की भाषा समझता है, नदियों के गीत गाता है, खेतों में हरियाली बनकर मुस्कुराता है और हमारे जीवन की हर धड़कन में शामिल रहता है। जरा सोचिए, जिस पानी को हम नल खुला छोड़कर बहा देते हैं, उसे पाने के लिए कुछ लोग कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जिस पानी को हम बूंद समझकर मामूली सा समझते हैं, वो किसी की पूरी एक उम्मीद हो सकती है। तो आज जनवाणी कार्यक्रम में सिर्फ पानी की बात नहीं होगी, बात होगी हमारी जिम्मेदारी की भी, क्योंकि जल सिर्फ एक संसाधन नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी अमानत है। कार्यक्रम है जनवाणी, यानी जन जन की वाणी। आप सब श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है, जल जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी, इस विषय पर आज अपनी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या कुछ आपके विचार हैं इस विषय पर जुड़े, ये हम हमारे साथ साझा करिए। 0189224391 ये स्टूडियोज का नंबर रहेगा।

0: इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, लगता है कॉल मिलाकर ये शायद भूल गए या किसी काम में मशरूफ हो गए। 01892224391 ये स्टूडियोज का नंबर है और जनवाणी कार्यक्रम में आज का विषय है जल जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी भी। कितना जिम्मेदार हैं आप इस विषय को लेकर, यानी जल को लेकर, इस पर अपने विचार साझा करें। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत।
1: हाँ जी हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: जी जांगड़े जी, विषय सुना आज का?
1: हाँ जी हाँ जी, सुन
0: जी,
1: रहे हैं तभी
0: क्या,
1: फोन किया है।
0: जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: यही कहना चाहेंगे कि जल है तो कल है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि जो चीज हमें आज फ्री में मिल रहा है
0: जी,
1: बहुत से लोग उनका मूल्य नहीं समझ पाते। और कई ऐसी ऐसी जगह है, हम न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि 2 किलोमीटर पानी लेने जाते हैं, गहराई में उतर कर पानी लेने जाते हैं।
0: जी,
1: इन
0: जी।
1: सारी भयावह स्थितियों को देखते हुए हम भी कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो कल हमारी भी बारी है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम पानी की बचत करें, आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए।
0: जी ये तो बात हुई योगेश जी आपकी, कि आपके ये विचार हैं, अपने परिवार में भी आप सब जैसे परिवार के सदस्य हैं, बच्चे खास करके, उनको इस बात की नसीहत देते हैं कि जल जो है बहुत कीमती है, उसे बर्बाद ना करें।
1: बिल्कुल बताते हैं, जैसे बच्चे नहाते हैं तो उनको बताते हैं कि पहले टब में पानी झोंक लो फिर नहाओ, और जैसे नल है तो उनको ऐसे वेस्टेज मत चालू रखो। और हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर में भी, हमारे यहाँ जैसे बांध है तो जो बरसात का पानी है उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर वो बाद में खेती बाड़ी के सिंचाई काम में भी आ जाता है।
0: जी बहुत अच्छी ये पहल है कि वर्षा जल को हम संचय करें और भविष्य में उसे इस्तेमाल करें। आज आपने कॉल किया और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, कॉल के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने शुरू में एक पंक्ति कही, जल है तो कल है। श्रोताओं बहुत ही मायने हैं इस पंक्ति के, कल हमारा तभी साकार है, उसे एक साकार रूप तभी हम दे पाएंगे अगर जल होगा। सांसें हमारी चल रही हैं, ये बात बहुत अच्छी है, सांसें चलेंगी तो जीवन है, लेकिन इन सांसों के चलने के लिए जल की बहुत ही बड़ी महत्ता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगले कॉलर से बात करें। हेलो
2: हेलो नीलम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते जी, महेंद्र सिंह जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
2: देखिए नीलम जी, जल ही जीवन है।
0: जी बिल्कुल।
2: देखिए कोई भी प्राणी हो, चाहे वो फसलें हो, पेड़ हो, पौधे हो, या मनुष्य हो, या जीव जंतु जानवर हो, सभी 5 तत्व से बनते हैं।
0: जी।
2: जल

0: वायु और अग्नि और मिट्टी, ये पांच तत्व मिलकर ही हमारा जो जीवन है उसको चलाने में सहायक होते हैं। अगर जल नहीं होगा तो हमारा किसी भी प्राणी का जीवन नहीं होगा, ना तो फसलें होंगी, ना जीव जंतु होंगे, ना पेड़ पौधे होंगे।
1: जी,
0: इसलिए हमको जल का जो है, जल को बचाने की विशेष ध्यान देना चाहिए। कई आदमी क्या करते हैं, बेकार में अपनी कारों को या स्कूटर को किसी भी चीज को बेकार में धोने शुरू हो जाते हैं, गली में इतना कीचड़ भी कर देते हैं और पानी भी बेकार में बहा देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जितना हो सके जल को उतना, जितनी जरूरत है उसका उतना ही इस्तेमाल करें, ना कि बेवजह से उसको बहा दें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार।
0: जल नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए जल के बिना हम तो 5-7 दिन तो कट सकते हैं, लेकिन 5-7 दिन के बाद हमारा जीवन जो है दुभर हो जाता है।
1: जी,
0: इसलिए हमको पानी बचाने की बहुत देनी चाहिए। मैं, मेरे आदत है जब भी मैं किसी जाता हूँ, इधर उधर कोई नल खुला होता है म्युनिसिपैलिटी का,
1: जी,
0: तो मैं उसको बंद करने की कोशिश करता हूँ।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है जी।
0: हम सभी को चाहिए कि जल को बेकार में ना बहाएं, जितनी जरूरत हो उसका उतना ही इस्तेमाल करें, और जहां भी जितनी जरूरत हो, देखो हम आरओ चलाते हैं तो उसमें जो वेस्ट पानी होता है उसको किसी दूसरी बाल्टी में भर लो, और हमारे जो किचन गार्ड है उसके पेड़ पौधों को उसको लगा दो, जो अपने कार वार जो भी वॉशिंग करना है उसको उस पानी से धो लो।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपके और बहुत अच्छी बातें आपने की। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया।
0: शुक्रिया नीलम जी, धन्यवाद
1: जी। जी श्रोताओं, जल जो है उसके बिना कल नहीं है। जल हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, प्रकृति ने हमें जिससे नवाजा है, जल जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी भी। इस विषय पर आज के कार्यक्रम जनवाणी में हम बात कर रहे हैं। श्रोताओं, सबसे अच्छा कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो उसकी पहल हमें खुद से करनी है, अपने आप से शुरुआत करें। कभी भी घर में कुछ भी काम हम कर रहे हैं, ब्रश करते हैं या हाथ मुँह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी किसी बर्तन में लीजिए। ब्रश करते वक्त हमने देखा है कि कई लोग नल खुला छोड़ देते हैं और पानी बह रहा है, ब्रश हो रहा है। एक मग या जग में पानी आप लीजिए और उससे ब्रश कीजिए। इस तरीके से पानी की बचत में आप पहल कर सकते हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
2: मैं जयकरण सराज से जी।
1: जी जयकरण जी, बताइए अपने विचार रखिए आज के विषय पर, क्या कहना चाहेंगे?
2: जी विचार अभी तो दो ही कॉल हुई है, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे उन्होंने
1: जी।
2: और जल ही जीवन है, जल है तो कल है।
1: जी बिल्कुल,
2: अगर नल है तो जल है।
1: जी जी बिल्कुल
2: जी, अगर हम नल को खुला छोड़ेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा
1: जी।
2: तो हम तो मजे लेंगे ना, गाड़ी को भी नला रहे हैं, आप भी नला रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं
1: जी।
2: अगर जल हम बचाएंगे तो दूसरों के काम भी आ सकता है।
1: जी बिल्कुल, जल को अगर हम बचाएंगे,
2: जरूरत जो है वो हर जानवर को है, पशु पक्षी हर चीज को है, पर जल बचाना इंसान का काम है।
1: जी बिल्कुल।
2: और दूसरी बात में ये कहना चाहूंगा कि जो गाड़ी गुड़ी आप धोते हैं ना वगैरह, तो उन कहीं मतलब दूसरे नाले नूले में जाकर या जो वॉश करते हैं गाड़ी को, जहाँ ये बंदे बने होते हैं ना स्टेशन इनके,
1: जी जी,
2: वहाँ जाकर धोएं, क्योंकि जल का दुरुपयोग ना हो।
1: जी बिल्कुल।
2: और जल जो है पानी, आजकल प्रचंड गर्मी पड़ रही है, किसी बर्तन में 2-3 बर्तन में कहीं रख दो, चाहे कोठे पे रख दो, चाहे कहीं जगह जहाँ पंछी आते जाते रहे।
1: बिल्कुल, पंछियों के लिए। और
2: जी
1: जल का संचय, जी जी कहिए कहिए।
2: वो मतलब अपनी प्यास जो आसानी से भी जा सके।
1: जी बिल्कुल, मानवता की यही पहचान है।
2: बहुत बढ़िया विषय रखा है, आगे भी और कॉलर भी आएंगे, और बीच में अगर आप मनोरंजन लेते हैं ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल,
2: एक गाना जरूर बजा देना, पानी रे पानी।
1: जी बिल्कुल, ये गीत ना बजे तो ये विषय शायद अधूरा रह जाएगा। ये गीत जरूर आपको सुनवाएंगे हम, एक और कॉल लेंगे उसके बाद इस गीत के साथ आपके लिए आते हैं, ठीक है जी। आज की कॉल के लिए शुक्रिया जी। जनवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं, और आज का विषय बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है श्रोताओं, जल जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी भी। और गर्मियां जब आती हैं तो इस विषय के प्रति हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, लेकिन हर वक्त हमें इस विषय पर सजग रहना है, पानी को बचाना है। पानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बोलता नहीं, लेकिन इसकी कमी जो है वो बहुत कुछ बोल जाती है। और बहुत से लोग आज देश के, बात करें विश्व के हिस्सों में पानी की इस कमी को झेल रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है?
1: जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं कौन बोल रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से।
1: जी राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहते हैं?

0: संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि अब पानी का संकट जो है
1: जी
0: पूरे विश्व में बढ़ चुका है, खासकर जो है हमारे हिमाचल में भी बढ़ चुका है।
1: जी
0: तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पानी का बचाव करना चाहिए, और पानी का जो है मूल मंत्र ये है कि पानी हमें उतना यूज करना चाहिए जितनी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, पानी का जो नल जो है लोग खुला छोड़ते हैं, वो
1: जी
0: लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, और हम कई बार खेतों में पानी का जो है सिंचाई करते हैं, वो ठीक है कर सकते हैं
1: जी
0: उसके लिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि पीने का पानी की जो, अगर मानो कि मार को पानी आ रहा है लिफ्ट का समय समय पे, तो उसको हम सिंचाई के लिए ना लगाए। लेकिन सिंचाई के लिए जो है हम, जैसे कि बारिश, आजकल बारिश आ रही है, तो हम बरसात का पानी को भी हम रोक सकते हैं, तो उसको भी हम सिंचाई में ला सकते हैं। क्योंकि
1: इस्तेमाल कर
0: पानी
1: सकते हैं।
0: को हमें इस तरह से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: अगर अगर हम सोचे कि चलो पानी क्या है, ये कुदरत की देन है, ये तो आ जाएगा, और भी कि पर इस तरह से जो ऊपर से जो है पानी सोख रहा, क्योंकि नदियां जो है जल जल तो है घट रहा है, क्योंकि जगह जगह पे सड़कें बन रही, तो फिर पानी का जो है स्रोत जो है बिल्कुल घट रहा है।
1: जी बिल्कुल, नल हम खुला ना छोड़े और पानी को व्यर्थ ना गवाएं। बहुत अच्छे विचार आपके और बहुत अच्छी बातें आपने की। कॉल करने के लिए राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी धन्यवाद।
1: जी जी श्रोताओं, सब श्रोताओं से जितनी भी बात हमारी हो रही है, सबसे पहली बात यही आती है कि नल अक्सर हम खुला छोड़ देते हैं। घरों की बात हम करें तो घरों की बात में हम ये है कि बच्चा खुला छोड़ेगा तो कोई बड़ा बंद कर देगा, लेकिन कहीं अगर खुले में या किसी सार्वजनिक स्थल पर हम देखते हैं नल खुला है, तो हम इसे अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, दायित्व नहीं समझते हैं कि उस नलके को बंद कर दिया जाए और पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाए। कभी कभी नल से टपकती बूंदें जो हैं उन्हें गौर से देखिए, वे सिर्फ पानी नहीं है, वो भविष्य भी बहा कर लिए जा रही हैं। तो पानी को संचय कीजिए। और अगली कॉल हम लेंगे, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। इस बार रविवार दिनांक 21 जून 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किए जाने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा सर्वाइकल बचाव ही उपचार। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न आप स्टूडियोज में उपस्थित विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद साजिद, अस्थि रोग विशेषज्ञ। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। दिन है रविवार का, यानी 21 जून 2026 और समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर रहेगा 0189224391। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए 0182-22-43-91 और दिन रविवार 21 जून 2026। ये कार्यक्रम आप 103.4 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, जनवाणी कार्यक्रम के साथ आप जुड़ेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई OTP देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या OTP नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला जिला की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की। और केलंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद देना है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 तक, वहीं नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। शिमला जिला में नशे विशेषकर चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान 441 पंचायतों में शुरू किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चिट्टा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर युवाओं को नशे के खिलाफ आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अभी तक जिला में मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा 159 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मंडी जिला व ऊना जिला में सघन नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। इस दौरान टास्क फोर्स की टीम द्वारा मंडी में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से 4 किलो 850 ग्राम चरस बरामद की गई है। मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर ऊना जिला में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक अन्य कार से 25 किलो से अधिक पोस्त चूरा बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एक बागवान से केवल 100 बोरी खरीदने के निर्णय को जल्द

0: वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम की मार और विभिन्न बीमारियों के चलते बी ग्रेड सेब की मात्रा हर वर्ष लगातार बढ़ रही है और बागवान ऐसे सेबों की बिक्री के लिए एचपीएमसी पर ही पूर्णतया निर्भर है। ऐसे में 100 बोरी की लिमिट लगाना बागवानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
1: 2023 की आपदाई, 2025 की आपदाई, रोडे टूटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है सामान नहीं पहुंचा पाए मंडियों तक, लगातार जो डेटोरेशन हुई क्रॉप की वो हुई, उसके अलावा ऑल्टरनेरी आया, पतझड़ हुआ, जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी वो बागवानों को नहीं आया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर साल नई नई आ रही है। जब क्वालिटी डेटोरेट होती है या क्वांटिटी डेटोरेट होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हिमफेड और एचपीएमसी हमारे से बागवानों से बोरियां खरीदा करता था, सेब खरीदा करता था, जो हम मंडियों में नहीं बेच सकते हैं, उसको आप कैसे फोर्सी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लिया है। भारतीय जनता पार्टी इमीजिएटली उनसे रिक्वेस्ट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको रोल बैक किया जाए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के केलोंग में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश का जनजातीय इतिहास व संस्कृति विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें देश भर से इतिहासकारों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने भारतीय इतिहास के तथ्य आधारित लेखन पर बल देते हुए जनजातीय समाज व संस्कृति के संकलन को महत्वपूर्ण बताया। सेमिनार में लाहौल के इतिहास और प्राचीन कला से जुड़े कई शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। चंबा जिला की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला इस बार 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। मेले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
2: मिंजर मेला जिला चंबा की प्राचीन समृद्ध संस्कृति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी मेल मिलाप व भाईचारे का प्रतीक है। मेले के मूल स्वरूप व सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इस वर्ष भी कई कदम उठाने का फैसला लिया गया है। मिंजर मेले में स्थानीय संस्कृति की झलक को पेश करने तथा हिमाचली कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान करने का भी निर्णय हुआ है। मेले के आयोजन के लिए चौगान का प्रयोग करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया है और अनुमति मिलते ही चौगान की नीलामी कर आगामी प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश महिला आयोग द्वारा महिलाओं को भूमि स्वामित्व के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को जोड़ा जाएगा। ये जानकारी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने पर्वतीय महिला विकास ट्रस्ट द्वारा कांगड़ा में महिला अधिकारों पर आयोजित एक कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भूमि और संपत्ति केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर का भी आधार है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने चंबा में सड़क दुर्घटना की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, चंबा में खाई में गिरी गाड़ी, परिवार के 6 सदस्यों सहित 7 की मौत। बिजली उपभोक्ताओं पर एक नया बोझ, 33.8 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लागू, अमर उजाला की एक खबर है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी देंगे। हिमाचल दस्तक के मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी, अगले 5 वर्षों में प्रदेश बनेगा आत्मनिर्भर। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 19 से राज्य बारिश को तरसे, 7 में तो 60% तक की कमी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, मनाली में बारिश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। शिमला जिला की 441 पंचायतों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को किया जाएगा जागरूक। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने

0: के पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम जनवाणी में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, आज के विषय में आज के इस कार्यक्रम में बात हो रही है जिस विषय पर, वो विषय है जल जरूरत ही नहीं जिम्मेदारी भी। जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम बिजली का बिल देखकर सावधान हो जाते हैं, लेकिन पानी का हिसाब शायद ही हमने कभी लगाया हो। पानी धरती पर इसकी बहुत कम मात्रा है, लेकिन पीने योग्य पानी की अगर हम बात करें वो तो बेहद ही सीमित मात्रा में है, और यही चिंता का बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी शुरुआत अगर हम घर से करते हैं, अपने आप से करते हैं, तो पानी की बचत में हम अपना योगदान दे सकते हैं। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत, नाम बताएं।
4: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
3: जी प्रेम जी, अपने विचार रखिए, आज के विषय पे क्या कहना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा मैं जल, और हमारे जल तो सबसे कीमती चीज है, इसे ऐसे व्यर्थ न बहाए
3: जी।
4: और सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए जल की व्यवस्था सभी लोगों को अपने स्तर पर करनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल, आपके क्षेत्र में कोई पानी की समस्या है?
4: जी फिलहाल तो हमारे यहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि
3: तो
4: सब लोगों के पास में ट्यूबवेल है, कुछ के पास में कुएं भी है, और जैसे बरसात का पानी जो इकट्ठा होता है ना, तो एक बड़ा सा तालाब भी बना रखा है हमारे यहाँ पे।
3: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा।
4: उसमें मतलब सारा पानी इकट्ठित हो जाता है, और ऐसे मतलब नदियों में 2-3 जगह बांध भी बनाए गए हैं।
3: जी अच्छी बात है। और ट्यूबवेल की आप बात कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास ट्यूबवेल होते हैं, लेकिन कई बार पानी व्यर्थ बहता रहता है, तो कभी आपने आगे बढ़कर किसी को समझाया हो कि पानी की कीमत क्या है?
4: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे। पानी की कीमत तो वैसे बहुत कीमती होती है, बट हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्यर्थ पानी बहाता है। अगर नल भी आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो जितना नल में पानी इस्तेमाल किया जाता है उतना पानी भर के उन नल को बंद किया जाता है, और टंकियां भी सबने लगा रखी है अपने अपने घर पे। जब पानी इकट्ठा होने के लिए टंकी में भी, जैसे नल जाने के बाद में जब पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर टंकी से पानी निकाल लेते हैं।
3: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल के लिए शुक्रिया।
4: जी थैंक यू सो मच।
3: जी जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके इलाके में जो लोग हैं, इनके क्षेत्र में जो लोग हैं, वो पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं बहाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम, या जो नहीं सुन रहे और जो सुन रहे हैं, उनके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचे कि पानी जो है हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जो है वो बेहद कीमती है, क्योंकि जल है तो कल है। अगले कॉलर से बात करें। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार मैडम जी, मैं रतन चंद बात करता हूँ।
3: जी रतन चंद जी, कार्यक्रम में स्वागत है, रखिए अपने विचार आज के विषय पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
5: मैडम जी, आपका जो आज का विषय है, इसके दो भाग हैं।
3: जी बिल्कुल बताइए।
5: पहला तो है कि जरूरत।
3: जी
5: अब जरूरत का इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी पानी है उसका 97% जो है वो नमकीन पानी है, पीने के काबिल नहीं है,
3: खारा पानी। जी
5: खारा पानी चाहे झीलों में चाहे समुद्र में है।
3: जी बिल्कुल।
5: उसके बाद सिर्फ 3% पानी है जो पोर्टेबल है, पीने के काबिल है।
3: जी
5: तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि 3% पानी पूरी दुनिया ने पीना है, तो हमको इसकी जरूरत है। अब जल शक्ति विभाग का आप जगह जगह पढ़ते होंगे, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड इतना खर्चा किया, जल है तो कल है।
3: जी, जी।
5: जल ही जीवन है, जल की हर बूंद बहुमूल्य है।
3: जी
5: तो इसके बिना तो कोई ना हमारा जीवन है, ना पशु पक्षी जीव जंतु पौधे कुछ भी फिर सेफ नहीं है, यदि पानी नहीं है तो।
3: नहीं है तो। जी बिल्कुल।
5: तो ये तो हमारी जरूरत है।
3: जी बिल्कुल।
5: अब जिम्मेवारी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम जितनी जुडिशियली इसका इस्तेमाल करें, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम पानी खर्च करें।
3: जी
5: हम दाढ़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा पानी लगाना होता साबुन बुरश के साथ, हम दाढ़ी 5 मिनट बुरश को रगड़े जा रहे हैं और वो पानी नलका चल रहा है,
3: ऐसे तो
5: बुरश हम करते हैं।
3: जी
5: मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, हम जाके बंद करते हैं उसको।
3: जी बिल्कुल।
5: तो इसके लिए क्या हम एक करना, दूसरा सबसे बड़ा है जी कि कंजर्व करना है पानी को।
3: जी
5: जो है वो तो आ ही रहा है, पर आगे कैसे होगा उसको कंजर्व करना, तो उसके क्या सबसे बड़ा उसका

0: माध्यम है प्लांटेशन करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: जितनी ज्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही ज्यादा जमीन में पानी जो है कंजर्व होगा।
1: जी
0: आजकल सरकार पैसे दे रही है, जितना बारिश का पानी होता है बरसात का पानी होता है उसमें सब्सिडी दे रही है, टैंक बनाए हम, उससे क्या होगा कि एक तो हम जब जरूरत है हमको गाड़ी धोनी है वहां से पानी ले लो, अपने पौधों को देना वहां से ले लो, और दूसरा आपका जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का वो ऊपर आएगा उससे।
1: हाँ जी।
0: और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पोल्यूट ना करें, उनको प्रदूषित ना करें।
1: जी सबसे जरूरी बात,
0: सबसे जरूरी है उनको बिल्कुल हम सेफ रखें। जहां भी दिखाई देता है कचरा वगैरह उसको साफ कर, चाहे आप अकेले जितना कर सकते हैं करें या फिर सामाजिक लेवल पे अपने गांव के इस लेवल पे इसको जरूर करें।
1: जी रतन सिंह
0: जी, हमारे
1: जी रतन चंद जी जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा जल स्रोत है जो जैसे बावड़ी होती है, कुएं होते हैं?
0: हमारे बावड़ियां तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ, यहाँ कुएं होते हैं और सब कुएं गर्मियों से पहले साफ करके रख दिए जाते हैं। हम आजकल कुओं का ही पानी भर के पी रहे हैं।
1: अच्छा, इस्तेमाल में है वो?
0: हाँ बिल्कुल इस्तेमाल में। पहले यहाँ तो लोगों ने अपनी अपनी जमीन में अपना अपना ही बनाया हुआ था पहले इस इलाके में, पर जैसे ही अब ग्राउंड वाटर जो नीचे चला गया तो कई सूख गए हैं कुएं।
1: जी
0: तो अब लोग लापरवाह इसलिए हो गए कि नल में पानी आ रहा है खूब, पीने के लिए चाहे एक किलोमीटर भी जाना पड़े तो लोग वहां से जाके लाते हैं।
1: जी कुएं का पानी बहुत मीठा होता है।
0: सबसे बड़ी बात यह है जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो वर्तमान है इसका परम कर्तव्य है ये कि वो अपने भविष्य की रक्षा करे।
1: जी
0: हम प्लांटेशन करेंगे, हम वाटर रिसोर्सेज को बिल्कुल सेफ रखेंगे, तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका इस्तेमाल कर सकेंगी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और वो रखेंगे तो फिर आगे उनकी आगे वाली पीढ़ियां जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगी, ऐसे ये सिलसिला चलेगा।
1: जी,
0: हर आदमी की जिम्मेवारी है कि बिल्कुल इसको अक्सर से इसका पालन करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपने आज रखे हैं, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, और उम्मीद करते हैं कि ये श्रोता जो है वो केवल सुने ना, इन बातों पर मंथन करें, विचार करें।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद जी आपका जुड़ने का और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। श्रोता वो बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही और हर बात हम सुनते हैं, और कई बार होता है कि जैसे कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर हमें मंथन करने की, विचार करने की बहुत आवश्यकता है। जल भी उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसके बारे में हम जितना सोचें उतना कम है। हेलो
2: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्ते जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, परिचय दें अपना।
2: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी तोमर जी कार्यक्रम में स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
2: अगर आज से बचाएंगे हम बूंद बूंद जल
1: जी,
2: तो जीवन बेहतर होगा कल।
1: जी बहुत बढ़िया।
2: नदियों नहरों का पानी व्यर्थ न बहने पाए, आसमां से जो बरसे वो खेतों में समा जाए।
1: जी
2: मेण बंधन बनाकर जागरूक इंसान बने, जल संरक्षण जल संवर्धन सर्वत्र हम करें।
1: जी बहुत बढ़िया जी, आपकी खुद की पंक्तियां हैं ये?
2: जी
1: जी बहुत बेहतर।
2: जल संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए,
1: पोखर
2: तालाब को जीवंत करना चाहिए, आसमान से जो पानी बरसे उसको व्यर्थ न बहने दें, और व्यर्थ पानी जो जाता है उसको गृह वाटिका में अपने प्रयोग करें।
1: जी बिल्कुल,
2: मतलब कोई पानी व्यर्थ न बहने पाओ। छोटे छोटे काम हमारे अधिक सार्थक प्रयास हो सकते हैं, जैसे नल खुला है तो उसको बंद कर दें, व्यर्थ पानी न बहाएं।
1: जी बिल्कुल, आगे बढ़ें और खुद इनिशिएटिव लें, ये इंतजार ना करें कि कोई दूसरा करेगा तो फिर हम करेंगे।
2: जी हमको भी करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज की कॉल के लिए शुक्रिया।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, और कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं जनवाणी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं जल की महत्ता के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, कितना जरूरी है जल हमारे लिए और क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है हमारी इसे बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए। हेलो
3: हेलो नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्ते जी।
3: नमस्कार मैडम जी, मैं नागेंद्र सिंह जी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी हिमाचल।
1: जी नागेंद्र जी स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में, क्या कुछ कहेंगे?
3: हाँ मैडम जी, बहुत अच्छा विषय है। आजकल ये जो नई नई पंचायतें बनी
1: जी,
3: और इस दौरान जो लोग भी वोट मांगने जाते थे, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत होती थी कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, हमारा लाइन ठीक नहीं है
1: जी,
3: हमें पानी की उचित मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है
1: जी।
3: और आजकल मैडम जी ग्राम पंचायतों में, अदालतों में, IPH के पास और दूसरे जितने भी विभाग हैं SCM तक,
1: हाँ जी,
3: तो 30% शिकायतें जो है पानी से संबंधित होती हैं।
1: जी बिल्कुल,

0: और इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो असमान वितरण जो सामाजिक अशांति का सबब बन चुका है
1: जी।
0: तो मैं समझता हूँ कि ये जो बढ़ती आबादी है और हमारा जो गांव का जो शहरीकरण और गांव की जो बदलती जीवन शैली के कारण जो पानी की मांग बढ़ रही है
1: जी,
0: इसके लिए जल संसाधनों को और जल सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ी ये चुनौती है जी।
1: जी,
0: और इसमें मैडम जी मैं समझता हूँ कि हिमाचल में तो खास तौर पर जल अभाव जरूर हो सकता है गलत नीति की वजह से, लेकिन जल संकट यहाँ पर नहीं है, ना जल अकाल वाली स्थिति है जी।
1: जी, स्थिति नहीं है लेकिन बनते देर नहीं लगती है, इसलिए पानी का संचय बहुत जरूरी है, संरक्षण बहुत जरूरी है।
0: ये बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने कि हमने जो देखिए जितने ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए हैं
1: जी,
0: या जो हमने जो छोटे छोटे बांध बनाए हैं जिनमें कि मतलब इरोजन होने की वजह से जो टूट गए हैं, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ये गलतियां हम लोगों की हैं कि निप डाइबल इन द बर्ड शुरू नहीं, अगर हम इसका इलाज कर लें, लीकेज को अगर हम रोक लें तो हम एक बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे हमारी धरती भी रिचार्ज होती है जब खेतों में पानी पहुंचता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल में छोटे छोटे जो नदी नाले खड्ड जो हैं उनमें अगर जगह जगह पर बांध बनाए जाएं तो ये समस्या तो बाढ़ की भी एक सुरक्षा होगी,
1: सुरक्षा जी जी बिल्कुल,
0: भू संरक्षण को भी हम रोक सकते हैं,
1: रोक सकते
0: तो इस तरह छोटे छोटे बांध बनाने की कोई ऐसी स्कीम सरकार को बनानी चाहिए। और पानी की जहां तक बात है तो इसकी रिसाइकलिंग ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने किचन गार्डन लगाए होते हैं तो बाथरूम का नहाने का पानी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूर्व श्रोताओं ने भी बहुत सही कहा, लेकिन मैं एक बात और महसूस कर रहा हूँ जो आपने भी एक बात कही कि बिजली का बिल तो हम चिंता होती है लेकिन पानी की नहीं होती
1: जी बिल्कुल,
0: जबकि हकीकत ये है कि मैडम जी IPH जो जल शक्ति विभाग है उसके द्वारा जो वाटर लिफ्ट स्कीमें हम तक पहुंची हैं, जो बोरवेल बने हैं, जो पंप हाउस है, पंपिंग मशीनरी है, राइजिंग मेन है
1: जी,
0: या सेडिमेशन टैंक और फिल्टर बेड बने हुए हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बनी हुई हैं, उसके बाद स्टाफ रखा हुआ है
1: जी,
0: तो ये जो 10 रुपए का बिजली का बिल हम देते हैं और उसमें हजारों रुपए का जो पानी हम बर्बाद कर देते हैं, इसकी जिम्मेवारी हमने समझनी चाहिए। 1 लीटर पानी जो है हमारे नलके तक पहुंचने में 7 रुपए खर्च होते हैं मैडम
1: जी बिल्कुल,
0: और ग्रेविटी की स्कीम हो तो उसमें 4 रुपए खर्च होते हैं जिसमें कि मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरोनाइजेशन और वाटर गार्ड लाइनमैन और स्टाफ का जो खर्चा है वो अलग से है जी। तो हमें इस चीज को महत्व को समझना चाहिए, जल के महत्व को समझते हुए हमें विभिन्न तरीके ढूंढने चाहिए जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि आने वाले कल के लिए अगर जल का संरक्षण और संचय हो सके तो वो क्योंकि जल नहीं तो कल नहीं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये हमें विसल ब्लोअर भी बनना चाहिए और हमें इन चीजों को महसूस करना चाहिए तहे दिल और दूसरे लोगों को भी रोकना चाहिए।
1: हाँ,
0: एक बात मैं कहना भूल गया मैडम जी,
1: हाँ जी।
0: ये जो हमारे बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं जो प्लास्टिक और जो गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो उसको भी हमें उन लोगों को थोड़ा सा आगाह करना चाहिए कि यहाँ का पानी अगर आप बर्बाद कर रहे हैं हमारे नदी नालों का, यही पंजाब और हरियाणा में और दूसरे सोर्सों के माध्यम से जो है आप तक पहुंचा है नहरों के माध्यम से
1: बिल्कुल,
0: और इस पानी को खराब मत कीजिए। और ये जो हम पशुओं को या जो गंदगी जो नदी नालों में फेंकते हैं मरे हुए पशुओं को फेंक देते हैं ये महापाप है मैडम जी।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत आपने की और बहुत अच्छे विचार आपने रखे रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी धर्मशाला के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी।
0: धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि बुराई को जन्म लेते ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपके घरों में भी अगर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो पानी व्यर्थ गंवाते हैं तो बचपन से ही उनमें ये आदत हमें डालनी है कि पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, और अगर अपना भविष्य आप सुनहरा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा उज्ज्वल कल आप देखना चाहते हैं तो पानी व्यर्थ ना गंवाएं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्ते जी,
2: मैडम जी।
1: जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: मैडम जी, मैडम सबसे पहले तो कहूँगा ना, कहते हैं ना कि जल है तो कल है
1: जी,
2: हमें ये नारा ये दर्शाता है मैडम जी कि जल ही हमारे अस्तित्व और भविष्य का आधार है
1: जी बिल्कुल।
2: यदि हाँ जी, यदि हम आज पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा,
1: नहीं रहेगा जी।
2: हाँ जी, एक बात और मैडम जी की मैं ये बात देखता हूँ ना कि अगर किसी के नलके में एक एक बूंद भी पानी की टपकती है ना
1: जी,
2: तो उसके नीचे अगर हम बाल्टी रखते हैं तो शाम तक बाल्टी भर जाती है।

0: जी बिल्कुल
1: और वो पानी भी हमारे कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें काम आता ही आता है। मैं
0: जी सही कहा आपने बिल्कुल।
1: हाँ जी, और दूसरी बात मैडम जी, जैसे हमारा वेस्ट पानी है ना घरों का,
0: जी
1: जैसे चाहे किचन में कहते ही है, अब उसको हम ठीक ढंग से उसका यूज करें तो हमें खेती बाड़ी के काम में भी आ जाता है मैडम जी वो।
0: जी बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं ये।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, हम छोटी छोटी बातें लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब की एक बाल्टी हम बचाएंगे, एक दूसरा बचाएगा तो
0: जी
1: कितना एक एक करके कितना पानी बच जाएगा
0: जी
1: मैडम जी,
0: बिल्कुल, बहुत
1: और किसी ना किसी के काम में आएगा ही आएगा मैडम जी वो।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात
1: धन्यवाद
0: करके, कॉल के लिए शुक्रिया
1: धन्यवाद
0: जी। ओके जी ओके, बहुत शुक्रिया।
1: ओके धन्यवाद
0: ओके जी
1: मैडम जी धन्यवाद
0: ओके जी ओके जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हैं ये और बहुत ही विचार करने योग्य ये बातें हैं, और इनमें से अगर एक या दो बातें भी हम अपनाते हैं तो कल के लिए हम जल की बचत कर पाएंगे।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सचिव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 01892224391 स्टूडियो का नंबर। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो
6: हेलो नमस्कार मैम जी।
0: जी नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बताएं अपना।
6: मैं शारदा बात कर रही हूँ बैजनाथ से।
0: जी शारदा जी, विषय पर क्या कुछ कहना चाहेंगी आज?
6: हाँ जी मैम, पानी तो जैसे सुबह होती है ना तो पानी से शुरुआत होती है, हाथ मुंह धोने से शुरुआत होती है मैम
0: जी।
6: हाँ जी मैम, तो घर में तो सभी बचा लेते हैं ना कि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि पानी व्यर्थ गवा रहे हैं तो हम बंद करें
0: जी।
6: लेकिन कहीं बाहर भी तो कहीं रास्ते से चलते हैं तो नल खुले होते हैं, उनको भी बंद करना जरूरी है ना, उनको बताना भी जरूरी
0: बिल्कुल,
6: है।
0: बिल्कुल, हमारी अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए।
6: हाँ जी मैम, और हमने क्या देना, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को क्या देना जो हमने जल लिया ऐसे बर्बाद करना। तो
0: जी बिल्कुल, हम बच्चों को पैसा सहेज कर रखते हैं, घर बनाकर दे रहे हैं, और भविष्य में अगर पानी ना हो तो कैसा भविष्य होगा वो।
6: हाँ जी मैम, और हमने तो मैम 2000 में हमने टैंक पानी का बनाया, तो मैं खुद बारिश का पानी उसमें इकट्ठा करती हूँ। जैसे
0: जी
6: पानी नहीं होता ना हमारे गांव में, सुन पर मैं बहुत तंगी रहती है पानी की। अभी
0: जी,
6: अभी
0: जी,
6: मार्च अप्रैल में मैं इतनी तंगी हुई ना।
0: अच्छा,
6: कि पूछो मत
0: जी।
6: हाँ जी मैम, तो यहाँ पे हमारी बावड़ी है एक नजदीकी हमारी जमीन में, लेकिन वो किसी ने साफ नहीं करी मैम, पिछले 30 सालों से किसी ने साफ नहीं करी, तो मैंने खुद अकेली ने मुहिम छेड़ी है। मैंने ना 2 हफ्ते हुए उसको अच्छी तरह साफ किया, उसकी जो सीरे होती है ना वो बंद
0: जी, जी, जी, जी।
6: हाँ जी मैम, तो
0: बहुत अच्छा कार्य आपने किया जी, बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय हाँ कार्य है।
6: और मैम मैं अकेली करती हूँ, हालांकि मेरे मुन्ने ने भी बोला मम्मी मैं तो ये बॉडी साफ करूंगा, लेकिन किसी ने भी, हम इतने घर है ना 15-20 घर है
0: जी,
6: कोई साथ नहीं देता, किसी का साथ करना क्यों जो अगर हमने।
0: चलिए जी, अच्छे काम के लिए किसी के साथ ढूंढना जरूरी नहीं है। जी जी बिल्कुल,
6: और मैं फीटरों को भी बुलाती हूँ जो प्लम्बर होते हैं ना, उनको भी एक बार महीने में आप लाइन चेक करो कि हमारे पानी की कमी ना हो। मैम मैं दिल्ली गई थी तो दिल्ली में भी देखा कि पानी की बहुत परेशानी है
0: जी, बहुत किल्लत है
6: पानी
0: जी,
6: की उधर परेशानी, खरीद के जो हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए पानी खरीदना पड़ता है
0: जी बिल्कुल।
6: तो यहाँ भी ऐसा हुआ मार्च अप्रैल मई में, मुझे फोन करे कि मैम आप कुछ करो, घर से फोन करें यहाँ पे कि पानी नहीं आ रहा आप कुछ करो। परसों जो मैंने बोला कि हम आप सारे बर्तन उठा के कहीं जाते तो अपनी बॉडी को साफ नहीं किया जाता है
0: जी बिल्कुल, अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के उनको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, और ये पानी के ऐसे स्रोत हैं जो कभी भविष्य में खत्म नहीं हो सकते हैं अगर

0: हाँ
1: से
0: जी
1: इनकी
0: मैम,
1: देखरेख की जाए तो?
0: हाँ जी, देख रेख की जाए तो ये खत्म नहीं होंगे, और ना की जाए तो इसका जो जल है ना, वो जल स्तर बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: नीचे चला
1: बिल्कुल
0: जाता
1: नीचे
0: है मैम।
1: चला
0: हाँ
1: जाएगा जी, बिल्कुल
0: जी मैम,
1: जी, बहुत अच्छी बात है
0: और
1: जी।
0: हाँ जी मैम, ये है ना, अपने मुंह में मीठू नहीं होता, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, और एक बात और, जल में जो पानी है, पानी में बहुत गंदगी फेंकते हैं लोग, ये
1: जी
0: पूजा का हो गया सामान, फिर कुछ कपड़े हो गए, ये कोई नहीं मानता मैम। जब वो पिछले साल देख लो, फिर पानी की वजह से कितनी
1: जी
0: बर्बादी हुई,
1: बिल्कुल
0: कितनी
1: बिल्कुल
0: घर,
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: जी
1: जब
0: मैम,
1: हम गलत
0: वो
1: करेंगे कुछ तो उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा
0: भुगतना पड़ा, बहुत भुगतना पड़ा। अब
1: जी
0: अगली
1: बिल्कुल
0: बार देखते हैं क्या होगा, लेकिन जल को, स्रोतों को साफ रखें तो ठीक है
1: जी
0: सब।
1: बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही अपने कार्य जारी रखिए, और जल संरक्षण में जितना योगदान दे सकती हैं उतना योगदान दें। कॉल करने के लिए शुक्रिया
0: धन्यवाद मैम,
1: जी।
0: धन्यवाद।
1: जी जैसे इन्होंने कहा कि ये खुद पहल करती हैं, वैसे सभी श्रोताओं को चाहिए कि इस क्षेत्र में यानी पानी को बचाने के लिए जितना खुद से कर सकें उतना करने की कोशिश करें। कभी ये ना देखें कि हमें किसी का साथ मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हम कुछ करेंगे। और आपके क्षेत्र में अगर अपने कुछ जल स्रोत हैं पानी के, जैसे बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, तो उन्हें आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं और उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही मीठा और स्वच्छ जल इन जल स्रोतों से, हमें प्राकृतिक जल स्रोतों से मिलता है। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक गीत श्रोताओं को सुनवाएंगे।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
4: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.

0: कार्यक्रम जनवाणी से आप जुड़े हैं आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से। हेलो जी, कार्यक्रम जनवाणी में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्ते, अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम प्रसंगा जी, गांव बजाज तहसील पलाथ जिला कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: जी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: अरे पानी, मैं तो आज जंगलात में नौकरी करता रहा हूँ उत्तराखंड में। मैं वन सुरक्षा गार्ड साहब तो फॉरेस्टर रिटायरमेंट हूँ।
0: जी जी।
1: तो वहाँ पर नाला था, एक गोरखा नाला, श्री गोरखनाथ जी ने वहाँ ना चुपटा मार के पानी निकाला था। नाला सूखा था तो उन्होंने डेरा लगा दिया ना वहाँ।
0: जी जी।
1: तो वहाँ कहने लगे अपने उनको साथियों को कि जो गेहूँ के भाई खाना बनाओ। बोले के खाना कहाँ बनाओ, इधर नाला तो ये नाला जो है सूखा है।
0: जी जी जी।
1: तो गुरु गोरखनाथ जी गए नाले में जाके चिमटा मारा तो वहाँ से पानी निकलने लगा।
0: जी
1: चला पानी के 30 फुट नाले में घुटने घुटने भर पानी निकलने लगा।
0: जी जी जी।
1: तो ऊपर से ऑर्डर आ गया, जब मैं वहाँ पहुंचे अफसर था तो ऑर्डर आ गया कि इसको बंद करके इसमें पेड़ लगा दिए जाए।
0: जी।
1: तो मैंने रेंजर साहब जी से संपर्क किया, मैंने कहा साहब जी वो तो नाला तो चलता है, नीचे तो गांव वाले पानी लगाते हैं
0: जी,
1: इस नाले
0: जी,
1: में
0: जी,
1: भूल बना के
0: जी,
1: तो इसको बंद क्यों कर रहे हैं, नहीं बंद होना चाहिए। तो बोले भाई ऑर्डर आ गया डीएफओ साहब का डिवीजन से, मैं कुछ नहीं कर पाता, नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा
0: जी,
1: मैं कुछ नहीं, इसको बंद नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता
0: जी।
1: हेलो
0: जी जी।
1: तो फिर मैंने सीधा डीएफओ साहब से 60 किलोमीटर से डीएफओ साहब का ऑफिस है
0: जी,
1: सीधा जाके 60 किलोमीटर जाके डीएफओ साहब को दरखास्त दे के नाला नहीं बंद होना चाहिए, नाले में से पानी, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है नीचे गाँव में
0: जी जी,
1: गोरखनाला इसको कहते हैं, इसका नाम भी गोरखनाला है
0: जी,
1: इसको बंद नहीं करना है क्योंकि पानी से पानी भरी है, लोग पानी पीते हैं ग्वाले
0: जी।
1: तो इसको बताया पानी को
0: जी जी। तो आपका प्रयास सफल रहा जी जी, जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास आपका। और ऐसे ही जी, ऐसे ही जल संरक्षण के इस विषय के प्रति आप सचेत रहें। और कार्यक्रम में आज वक्त हमारे पास बहुत कम है जी, आपको रोकने के लिए माफी चाहते हैं, वक्त हमारे पास कम है, आज आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, पानी की बचत बहुत जरूरी है, वरना हम पानी के बिना ऐसे ही तड़पेंगे जैसे मछली तड़पती है। बहुत सही कहा आपने। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम जनवाणी। पानी की कहानी सिर्फ नदियों, झीलों और बारिश की नहीं, हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी की भी कहानी है। आज की चर्चा में जो आपने विचार हमारे साथ साझा किए, ये बताते हैं कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती, बल्कि घर के एक नल, एक बाल्टी और सबसे बड़ी बात एक जागरूक सोच से होती है। याद रखिए, पानी की हर बूंद में आने वाले कल की तस्वीर छिपी है, इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, पर्यावरण संरक्षण में ये हमारी अहम भागीदारी भी है। इसी संदेश के साथ जनवाणी कार्यक्रम में आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें पानी की एक एक बूंद को बचाने में हमेशा प्रयासरत रहें, क्योंकि जब पानी की बूंदें बचती हैं तभी भविष्य मुस्कुराता है। नदियां विरासत हैं, बारिश सौगात है, जल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी की बात है। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम के साथ और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, इस कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुँचाने में सहयोग दिया विपिन कुमार ने।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आकाशवाणी धर्मशाला के इस संगीतमय सफर गीतों का कारवां में, जहां सुरों के रंगों में सजी है जिंदगी की तमाम भावनाएं। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति। तो आइए इस मधुर संगीत यात्रा का आगाज करते हैं। पेश है एक बेहद प्यारा नगमा, कुमार सानू की आवाज है, कैफी आजमी के बोल, अन्नू मलिक की तर्ज है और फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: अभी आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत फिल्म मुस्कान से, आवाज का जादू बिखेरा उदित नारायण अलका याग्निक ने, निखिल विनय का संगीत निर्देशन। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कार्यक्रम में अब लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में

0: 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आइए इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सोनू निगम, कुमार सानू और अलका याग्निक को इस प्यारे से गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, राजेश रोशन ने धुन तैयार की है और फिल्म का नाम है क्या कहना।

अब अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से ये गीत। उदित नारायण की आवाज है, समीर ने इस गीत को लिखा है और आनंद मिलिंद का संगीत निर्देशन।

इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम का अगला लोकगीत रूपलाल की आवाज में आपके रेडियो सेट्स तक पहुंचा रहे हैं।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: आइए अब सुनते हैं सुनील राणा और मान सिंह को इस अगले लोकगीत में।

0: Every drive feels smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just Rs. 399 per month. Also get amazing benefits up to Rs. 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दीपक कुमार की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम के आखिर में अब आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच की आवाज में गाया ये लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्य बल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं शामिल है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार

0: पक्ष से हमारी सहयोगी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में हिमाचल के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए प्राप्त होगी। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य औपचारिक रोजगार बढ़ाना और पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद देना है। योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को 6 महीने बाद 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 तक, वहीं नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 साल तक 3,000 रूपए प्रति माह दिया जाता है। योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इस किश्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय कर समग्र व एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धर्मशाला में एकीकृत आयुष अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नए अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से युक्त एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने राज्य सरकार से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत एक बागवान से केवल 100 बोरी सेब खरीदने के निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की है। इनका कहना है कि मौसम की मार और विभिन्न बीमारियों के चलते बी ग्रेड सेब की मात्रा में हर वर्ष लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बागवान ऐसे सेबों की बिक्री के लिए HPMC पर ही पूर्णतया निर्भर है। ऐसे में 100 बोरी की लिमिट लगाना बागवानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
2: 2023 की आपदाई, 2025 की आपदाई, रोडे टूटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो है सामान नहीं पहुंचा पाए मंडियों तक, लगातार जो डेटोरेशन हुई क्रॉप की वो हुई, उसके अलावा ऑल्टरनेरी आया, पतझड़ हुआ, जो एक क्वालिटी आनी चाहिए थी वो बागवानों को नहीं आया, अलग अलग किस्म की बीमारियां हर साल नई नई आ रही है। जब क्वालिटी डेटोरेट होती है या क्वांटिटी डेटोरेट होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हिमफेड और HPMC हमारे से बागवानों से बोरियां खरीदा करता था, सेब खरीदा करता था, जो हम मंडियों में नहीं सकते हैं, उसको आप कैसे फोर्सी करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लिया है। भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको रोल बैक किया जाए।
0: चंबा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट के तहत कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कमियां उजागर हुई है। ये ऑडिट प्रदेश विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा जिला के 20% स्कूलों में किया गया है। ऑडिट की रिपोर्ट के सामने आए तथ्यों को चंबा में आयोजित एक जन सुनवाई के दौरान सार्वजनिक किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किए गए हैं, जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 6 डिग्री तक सामान्य से कम चल रहे हैं। विभाग ने आज राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान आने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 22 जून तक राज्य में कहीं कहीं बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इसमें संजीव शर्मा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता से बातचीत की है वंदना रैना ने।
4: श्रोताओं, ये साल 2026 भारतीय राजनीति और देश के इतिहास में बेहद खास है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार ने अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए।

0: और इस एक दशक से अधिक के सफर में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले, आर्थिक बदलाव और नीतियां देखी हैं। और इसी संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा जी। तो सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आकाशवाणी का मुझे निमंत्रित करने के लिए।
0: जी सर। और सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने कई योजनाएं शुरू की हैं, कई अभियान शुरू किए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना था भारत में नया बदलाव लाने का, भारत को भी आगे ले जाने का। तो ऐसे में जो उन्होंने अभियान शुरू किए हैं उसमें एक उनकी कल्पना थी डिजिटल इंडिया। तो इसके बारे में आज कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये परिकल्पना थी क्या।
1: देखिए, 2014 में जब देश के भीतर एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी
0: जी,
1: तो उसी समय एक तो जन आकांक्षाएं
0: जी,
1: क्योंकि जिस बहुमत के साथ इस सरकार को जनता ने इस देश की बागडोर सौंपी थी,
0: बिल्कुल,
1: तो निश्चित तौर पे बहुत सारी जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी
0: जी।
1: और आपने देखा होगा कि देश के भीतर एक समय ऐसा था कि इसी देश के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि हम जब दिल्ली से एक रुपया किसी योजना के लिए किसी के लिए भेजते हैं तो वो एक रुपया उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे या 15 पैसे रह जाता है, बीच में 85 पैसे उसके गायब हो जाते हैं। तो देखा जाए तो उसी समय अगर इस देश के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है लेकिन जानकारी के बावजूद समाधान नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं जो है वो इस व्यवस्था के ऊपर बहुत गहरी एक चोट थी, और चोट उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर भी थी कि इस देश का नेतृत्व तो ये तो जानता है कि इतनी बड़ी चोरी रास्ते में हो रही है लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो जिस तरह से 15 वर्ष तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे
0: जी,
1: और वहां पे जिस तरह से आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतर करके
0: जी,
1: और गुजरात को पूरे देश के अंदर बल्कि विश्व के अंदर एक रोल मॉडल स्टेट के तौर पे उन्होंने प्रस्तुत किया, तो देश की भी आकांक्षाएं जो है वो उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी गुजरात के लोगों की थी। जिस तरह से वो गुजरात के लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरे थे उसी तरह से उनको देश के लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर भी खरा उतरना था। तो सबसे बड़ी बात तो यही एक चैलेंज था कि जो एक रुपया दिल्ली से चलता है वो एक रुपया ही जिसके हाथ के लिए भेजा गया है, जिसके खाते में भेजा गया है, वो एक रुपया उसको मिले, उस एक रुपये के भीतर जो है वो कहीं कोई कटौती नहीं होगी
0: जी।
1: तो उसी के मद्देनजर जो है वो एक ही एकमात्र जो साधन जो है वो डिजिटल सपोर्ट को प्रमोट करना
0: जी।
1: आपने देखा होगा कि देश के भीतर जो है वो जब इतने बड़े स्तर पे जन धन खाते खोलना
0: जी जी जी,
1: अब बैंकिंग उसने की करोड़ों खाते खोलने के लिए हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, हमारे पास कई तरह के बहाने जो है वो बैंक्स ने भी बनाए
0: जी,
1: लेकिन जब आपकी कमिटमेंट जो है
0: बिल्कुल
1: वो स्ट्रांग होती है, ताकत होती है उसमें, आपकी इच्छाओं के भीतर ताकत होती है, तो बड़े से बड़ी चुनौती से भी पार पाया जा सकता है। और उन जन धन खातों को खोलने का एकमात्र ही सबसे बड़ा लक्ष्य जो था वो यही था कि जिसके खाते में जितना अगर एक रुपया चला है
0: तो वो एक रुपया उसके खाते तक पहुंच जाए।
1: उसके बीच में कोई दलाल नहीं होगा। तो इस परंपरा को समाप्त करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत का जो डिजिटल स्वरूप है वो पूरे विश्व के लिए जो है वो एक अचंभा भी है, उसने पूरे विश्व को एक इंस्पिरेशन दी है कि एक इतना बड़ा 140 करोड़ का देश
0: जी,
1: जहां के संसाधन नाम मात्र संसाधन होने के बावजूद जो है वो डिजिटल क्षेत्र के भीतर इतनी उन्नति करके विश्व के लिए अगर रोल मॉडल बना है तो ये तो यहाँ के नेतृत्व जिन्होंने नेतृत्व किया
0: जी,
1: और जिन्होंने आगे उसको इम्प्लीमेंट किया, ये सभी जो है वो इसकी बधाई के पात्र हैं।
0: जी सर। और सर, जैसा आपने बात की ना कि हिमाचल भी पर्वतीय राज्य है, वैसे ही हमारे देश में और भी पर्वतीय राज्य हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है सरकार के सामने कि किस तरह से उस चुनौती का सामना किया जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं?
1: डिजिटल इंडिया निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी जो है वो सबसे बड़ा एक चुनौती रहती है, और लेकिन प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं जो है वो एक जुड़ाव पहाड़ी राज्य चाहे नॉर्थ ईस्ट

0: चाहे उत्तरांचल हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे लेह और लद्दाख हो, चाहे जम्मू कश्मीर का विभिन्न चुनौतियों के बावजूद वहाँ के क्षेत्र हैं, वहाँ तक सुविधा जो है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे
1: जी।
0: तो उसके लिए जो है वो बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन हमारा टेलीकॉम विभाग और उसने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से निजी क्षेत्र को साथ में जोड़ करके उनकी जिम्मेदारियां भी तय करी, तो वहां तक पहुंचाना, और क्योंकि एकमात्र काम जो है वो सरकारी संस्थाएं जो डिजिटल क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं वो सिर्फ लाभ कमाना जो है वो केवल एक नजर में ना रहे
1: जी।
0: सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचे उसके लिए जो है वो, और आज आपने देखा होगा कि इतने कम समय के भीतर
1: जी,
0: यानी अगर पिछले 70 वर्ष की तुलना की जाए और ये 12 वर्ष की तुलना की जाए तो एक क्रांतिकारी बदलाव जो है वो देश की आर्थिक स्थिति में भी आया है, व्यक्तिगत तौर पे भी अगर देखें तो हर व्यक्ति को जो है वो इसका लाभ पहुंचा है। आज गांव के भीतर बैठा, खेत के भीतर बैठा हुआ किसान जो है, आप अगर कोई कृषि से संबंधित जानकारी जो है वो देना चाहते हैं तो वो खेत में बैठा सुन सकता है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि क्या बदलाव जो है वो आया है। या आप अगर कोई कृषि से संबंधित जानकारी या कोई भी जानकारी अगर आप अपने आकाशवाणी पे देते हैं, और अगर आप साथ में अगर और उसको जानकारी चाहिए तो अगर आप अपना कोई नंबर देते हैं और अगर आपको उस नंबर पे कोई कॉल बैक आती है, अगर दोबारा कॉल करके अगर कोई पूछ रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं आकाशवाणी को भी लगेगा कि वो अपना केवल मात्र जो है वो कार्यक्रम प्रस्तुति से अपनी जिम्मेदारी नहीं छुड़वा सकते, श्रोता जो है वो और जानकारी चाहिए तो आपको जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो रिसर्च वर्क करके उसको वो जानकारी उपलब्ध करवानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारा जो
0: यही एक नए भारत का जो है, ये नया भारत है
1: जी।
0: तो नया भारत जो है वो खेत खलिहान से लेकर के, पहाड़ से लेकर के, मैदान से लेकर के, पानी के बीच से लेकर के, हर तरफ जो है वो डिजिटल युग का जो है वो प्रणेता बना है। तो
1: जी सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी जानकारी का फायदा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आकाशवाणी का मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो भी पूरा होता है। तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है वो इस क्षेत्र में काफी अपनी भूमिका निभा रहा है। और सर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो दूर दराज की जो पंचायतें हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचाने में, ब्रॉडबैंड पहुंचाने में कौन कौन से प्रयास जो हैं वो सरकार द्वारा किए गए हैं, और हिमाचल को, हमारे प्रदेश को इससे कितना लाभ मिला है?
0: देखिए, डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य घटक जो है वो कोर कंपोनेंट्स जो है वो जो रहते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, मतलब उसको कहीं ना कहीं टावर्स, कनेक्टिविटी ये सारी ठीक से हो, हर गाँव जुड़े, कहीं ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण काम कंप्यूटर के अंदर पंचायतें कर रही हैं लेकिन आपका जो है वो स्पीड टूट जाती है, आपका इंटरनेट चला जाता है, तो आपका कई बार क्या होता है कि आपका किया काम जो है वो अगर आप सेव नहीं करते हैं तो वो एक फिर से आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें ना हो उसके लिए जो है वो डिजिटल, जैसे 4G 5G इस तरह से आया है तो उसकी कनेक्टिविटी के भीतर कोई दिक्कत ना हो, और ईमानदारी से सेवा लोगों को मिले, चाहे निजी कंपनियां जो है वो 4G 5G सेवा जो है वो उपलब्ध करवा रही हैं, तो आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे सस्ता जो है वो इंटरनेट अगर मिलता है तो वह भारत में मिलता है
1: जी।
0: कि आज एक छोटे से छोटा मजदूर जो है वो भी शाम को अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो स्मार्टफोन के ऊपर जो है वो अपनी कोई मूवी देख सकता है, कोई कार्यक्रम देख सकता है। तो ये एक ये डिजिटल क्रांति का ही जो है आप कह सकते हैं कि झंडा बुलंद हुआ है। और रेदर हिमाचल जो है, आप ये मान करके चलिए कि टेलीकॉम क्षेत्र में तो हम, जब देश सुविधाओं की तरफ देख रहा था तो हिमाचल जो है वो उन सुविधाओं से जुड़ गया था
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल क्रांति में भी उसी तरह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशली विशेषकर हिमाचल प्रदेश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी, इसलिए हमें इंटरनेट से जुड़ने में, डिजिटल उससे जुड़ने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आई। और कोशिश प्रयास दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, किन्नौर है, सिरमौर का जो है वो रिमोट एरिया है, लाहौल स्पीति का है, पांगी का है, तो ऐसे क्षेत्रों के भीतर जो है वो विशेष तौर पे भारत सरकार की समितियां जो है वो उसके ऊपर नजर रखती हैं, और हमारे सांसद, हमारे मंत्री जो रहे हैं उनका भी विशेष फोकस रहता है कि जो डिजिटल क्रांति देश के भीतर आई है वो कहीं

0: किसी अभाव के भीतर जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के दूरगामी क्षेत्र जो हैं वो कहीं छूटे ना। और आपने देखा होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते जो है वो चंबा को विशेष तौर पे, जितने जिले देश के जोड़े हैं उसमें चंबा जो है वो विशेष तौर पे जोड़ा गया है। तो उसी के भीतर जो है वो कहीं डिजिटल क्रांति में भी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका डेवलप होगा,
1: जी
0: जहां जहां कमी है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन डिजिटल क्षेत्र में भी वो क्षेत्र भी जो है वो देश के साथ जुड़े, इसके लिए विशेष प्रयास जो है वो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।
1: जी सर। और सर एक है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा है, राशि है, वो सीधे जो लाभार्थी हैं उनके
0: लाभार्थी
1: खाते में डायरेक्ट जा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पारदर्शिता और साथ ही भ्रष्टाचार पर कितना प्रभाव पड़ा है।
0: देखिए, मैंने आज की चर्चा की शुरुआत ही यहाँ से करी थी
1: जी
0: कि ये देश के लिए, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया था, और सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो सरकार का यही था कि जो पैसा
1: जी
0: जिस भी व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को जाना है, महिला को, बहन को, बेटी को, किसी को भी जाना है, वो पैसा बीच में वो कोई और तीसरा आदमी जो है वो, वहां तक कि, यहां तक कि उसका, अगर किसी महिला का पति भी उस पैसे के ऊपर डाका डालना चाहे तो वो
1: जी
0: उसके
1: जी
0: ऊपर, उसको उससे ले नहीं सकता है बिना
1: जी
0: उसकी मर्जी के।
1: जी
0: तो जो आपने की है, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे किसी और तरह की
1: जनधन योजना भी
0: राशि,
1: चली
0: जनधन
1: है।
0: योजना
1: जी
0: है
1: जी
0: के अंतर्गत जो भी पैसा,
1: हाँ
0: वो सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, और उसका लाभ उसके पंचायत का प्रधान, उसके बीडीसी, उसका जिला परिषद, बीच में किसी भी तरह का जो है वो व्यक्ति, वो स्कीम को तो बता सकता है, वो उसके काम में ये तो आ सकता है, लेकिन जो पैसा आएगा वो लाभार्थी के सीधे उसके खाते में आएगा। ये व्यवस्था जो है वो ये करके दी है। इसका जो है वो निश्चित तौर पे ये डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा लाभ जो है वो इस देश के पिछड़े हुए जितना वर्ग था
1: जी
0: उसको मिला है,
1: मिला है
0: और यही जो है वो इस सरकार की सफलता
1: उपलब्धि
0: का
1: है।
0: मेल
1: जी
0: मुख्य मंत्र जो है वो बन करके
1: जी
0: आया
1: जी
0: है। और यही कारण है कि आज जो है वो देश के भीतर स्थायी नेतृत्व जो मिला है लगातार सरकार बनना, 2014 में जब बनी, 2019 में फिर एक नए जनादेश के आई के साथ आई है, 24 में फिर एक नया जनादेश जो है वो मिला है। तो निश्चित तौर पे ये जो एक राजनीतिक स्थिरता देश के भीतर आई है, ये सरकार की उपलब्धियों का और डिजिटल क्रांति का भी जो है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि जब आपकी योजनाओं का लाभ लाभार्थी के सीधे खाते में जा रहा है, तो उसका जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रति वो भी समर्पित भाव से आपको लगातार सत्ता में देखना चाहता है।
1: जी। और सर कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने यूपीआई और डिजिटल भुगतान इसके लिए बार बार अपने भाषणों में और लोगों को भी प्रोत्साहित किया है कि वो डिजिटल भुगतान की जो स्थिति है उसको अपनाएं। और इसने भारत को एक विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई है कि भारत डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो एक मजदूर वर्ग भी है, छोटे दुकानदार भी हैं, टैक्सी चालक भी हैं या अनपढ़ लोग भी हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान हर कोई कर लेता है, तो इस बदलाव को आप किस नजर से देखते हैं?
0: देखिए, देश के सामने 2020-2021 में जब कोरोना काल आया तो
1: जी
0: बहुत बड़ी चुनौती इस देश के
1: बिल्कुल
0: सामने थी,
1: जी
0: और ऐसा भय का वातावरण था कि लोग एटीएम तक से पैसे निकालने में भी गुरेज कर रहे थे कि कहीं पैसा निकालने के
1: जी
0: भीतर, कहीं उसके भीतर भी कोई इन्फेक्शन ना हो,
1: बिल्कुल
0: कहीं किसी तरह की जो है वो उनके उनको हानि ना पहुंच जाए, कोरोना का प्रहार उनके ऊपर ना हो। तो निश्चित तौर पे वो समय एक चुनौती का समय था, लेकिन चुनौती जो है वो आपदा भी जो है वो इस देश के भीतर एक अवसर के रूप में जो है वो आई। और आज आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के भीतर भी एक बूट पॉलिश करने से लेकर के
1: जी
0: सिर पे सब्जी की टोकरी घर से उठा करके बेचने वाला व्यक्ति, वो भी आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अब लोगों की, जब से डिजिटल क्रांति का युग आया है,
1: जी
0: तो लोगों ने घरों में पैसा रखना भी बंद कर दिया है।
1: जी
0: कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि आप 2000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो, आप जेब में 100 रुपया लेकर के जाते हैं तो 100 रुपया ही वैसे का
1: वापिस आ
0: वैसा
1: जाता
0: वापिस
1: है।
0: आ
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो ये डिजिटल क्रांति जो है वो उसी का जो है वो एक जीता जागता उदाहरण है। आज हर भुगतान देश के भीतर एक बूट पॉलिश करने से लेकर के गोलगप्पे खिलाने तक का भुगतान जो है वो आप फोन से कर रहे हैं,
1: जी
0: और अगर फोन से कर रहे हैं तो इसमें आप ये भी देखिए कि आपकी नेटवर्किंग जो है वो, इंटरनेट की सुविधा

0: कितनी मजबूत स्तर पे आपको मिल रही है, आप सब तरह के जो है वो बिना किसी रुकावट के हर काम आपके हो रहे हैं। आपने टिकट बुक करनी है, आपने किसी तरह का कोई सरकारी फॉर्म भरना है, किसी तरह की कतारों में नहीं आपको जाना पड़ रहा है, तो ये सारे जो है वो डिजिटल क्रांति 12 वर्षों की ये पिछले हुई है, ये इसी के लाभ और इसी के अंतर्गत।
1: जी सर, और सर जैसा कि हम देखते हैं कि जब से ये डिजिटल क्रांति आई है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो बहुत सारी सरकारी सेवाएँ जो हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं, जहाँ पर हमें जो भी जानकारी हासिल करनी है उसके बारे में हमें ऑनलाइन ही पता चल जाता है, ऑफिस में हमें जाना नहीं पड़ता है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी, और साथ की कानून की सलाह है वो भी हमें ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक और सरकारी कार्यालयों के बीच में दूरी को कम किया है लोगों में, और उनको कुछ सफलता मिली है इसमें?
0: नहीं, निश्चित तौर पे आज आप ये देखिए कि आप पहले कोई भी किसी भी काम के लिए आपको गाँव से उठ करके आपको प्रधान के पास जाना पड़ेगा, आपको गाँव के भीतर अगर प्रधान को जानकारी पूरी नहीं है या प्रधान उप प्रधान या कोई और आपका पंचायत प्रतिनिधि या स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, अगर आपको वो जानकारी उनके पास पूरी तरह से नहीं है, तो आप स्कूल के मुख्य अध्यापक या किसी अध्यापक को पकड़ते थे, तो वो अब युग वो पीछे छूट गया। अब आज आपको आपके घर के भीतर आपका दूसरी चौथी छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आपको जो है वो अगर आपके पास शिक्षा का अभाव है तो वो आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाता है। कोई टाइम था कि आपको एक छोटी शिकायत के लिए भी जो है वो पानी की शिकायत, बिजली की शिकायत, उन शिकायतों के लिए भी जो है वो लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालयों के भीतर जो व्यक्ति नहीं मिलता था। आज आप जो है अपनी कोई भी शिकायत है उसको आप ऑनलाइन अगर भरते हैं तो आपको उसकी रिसीट भी जो है उसका आपको शिकायत नंबर आपको साथ में मिलता है। आपने पासपोर्ट भरना है तो पहले किसी को ढूंढना पड़ता था, वो आज आप जो है वो ऑनलाइन उसको सारा वो कर सकते हैं। मात्र एक बार जो है वो आपको कार्यालय में जा करके वहां पे अपनी फोटो खिंचवानी या जो कुछ भी आपको डिजिटली जो सिर्फ कार्यालय में ही होना है सिर्फ उस काम के लिए जाना पड़ता है। आज जो है वो उन सभी जो है वो लंबी लंबी दौड़ों से छुटकारा मिला है। पूरा दिन लोगों के जो है वो सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाते निकल जाते थे। तो ये शिकायत ग्रीवियंसेस की दूरी होना ये बहुत बड़ा डिजिटल युग का जो है वो एक बहुत बड़ी पहल है और इसके अंदर कामयाबी मिली है। पुलिस स्टेशन के अंदर आपने FIR करनी है, FIR की कॉपी जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपकी शिकायत जो है वो ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। आप अदालतों में जाते हो, आपको याद वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे कि 4 महीने के बाद आपकी कौन सी डेट है, लेकिन आज आपको जो है वो अगर सुबह आपका कोर्ट में पेशी थी तो शाम को आपको उसकी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाती है। तो इससे बढ़िया जो है वो डिजिटल इंडिया का उदाहरण हो नहीं सकता।
1: जी सर, और डिजिटल क्रांति से कहीं ना कहीं देश ने उपलब्धियों को हासिल किया है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। तो आम नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए सरकार किस तरह से जागरूक कर रही है, क्या उन्होंने जागरूकता अभियान चलाए हैं ताकि लोगों को पता चले और वो जो साइबर ठगी है उसके शिकार होने से बचें?
0: देखिए, भारत सरकार समय समय के ऊपर आप देखते होंगे कि साइबर ठगी ना हो, आप BSNL का कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी का भी अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको समय समय के ऊपर आपके रिंग जाने से पहले आपको जानकारी की डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहे, इस तरह की अगर कोई स्पैम कॉल आती है उसको अटेंड ना करें, किसी और अन्य उस पे आपको पैसा जो है वो मांगा जाता है तो आप ना करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम से जो है वो लोगों को एक हवा सा क्रिएट किया है, एक लोगों के अंदर भय का वातावरण भी बनाया जाता है। तो ऐसे वातावरण से नहीं बचने के लिए समय समय के ऊपर जो है वो कैंप भी लगाए जाते हैं, लोगों को जानकारियां भी दी जाती हैं। मुझे लगता है कि स्कूलों के भीतर जो है वो पुलिस के लोग, बैंकिंग सेवाओं के लोग, डाक सेवाओं के लोग जो है वो जाकर के उनको बताते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से जो है वो किसी भी तरह का कोई लिंक आता है, आप उसको ना खोले। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी जागरूकता कैंपेन चलाने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं लालच में इंसान आकर के जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्पैमर्स के, जो ये डिजिटल फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनके चंगुल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो है वो भारत सरकार ने कई तरह के प्राधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल्स जो है वो सेट किए हैं। कुछ जो है वो RBI ने भी इसके कि किसी के साथ कोई बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है डिजिटल

0: रूप से उसके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी की जाती है, तो उसके रिड्रेसल के लिए जो है वो ऐसे ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं कि उनका पैसा अगर किसी गलत खाते में चला गया है तो वो समय रहते वो पैसा वापस उनके खातों में आ जाए। तो ऐसी कई तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये जो पैसों का लालच है, जो डिजिटल फ्रॉड है, और जहां तक मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है कि ये पढ़े लिखे लोग जो है वो ज्यादा इसके चंगुल में आ जाते हैं और रातों रात जो है वो लखपति से करोड़पति बनने की योजनाओं के झांसे में आकर के वो अपने साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं कर लेते हैं। तो उनको मुझे लगता है कि सावधानी की अभी और कैंपेन की जरूरत, और इसके साथ साथ स्वयं जागरूक होना कि अगर कोई ऐसी चीज आती है तो उसको बजाय छुपाने के उसको वेरीफाई करना, उसको अगर एक बार से नहीं तसल्ली होती है उसको रीवेरीफाई करना, तो ये सभी तरह की जो है वो, क्योंकि जहां सुविधाओं के लाभ है उसके साथ कहीं ना कोई हानि भी होती है। समाज के अंदर अगर पुलिस आगे बढ़ रही है तो अपराधी भी उतनी तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो इससे सावधान रहना जो है ये व्यक्तिगत तौर पे हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, सजग रहना, सुरक्षित रहना।
1: जी सर, और सर हिमाचल प्रदेश में डिजिटल इंडिया अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों का अगर उल्लेख करना हो तो आपकी नज़र में वो उपलब्धियां क्या हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हमने वो उपलब्धियां हासिल की हैं?
0: नहीं देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं यही मानता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है सरकारी योजनाओं का, सरकारी पैसा जो आना है वो आपके सीधे खाते में आ रहा है, तो इससे बड़ी जो है वो कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। दूसरी उसके बाद जो है वो आपके ऑनलाइन शिकायतों का निवारण
1: जी,
0: और घर बैठे सुविधाएं प्रदान करना
1: जी,
0: ये जो है ये सबसे बड़ी सुविधा जो है। आज आप देख रहे होंगे कि सेंसिस का काम जो है वो जनगणना का काम शुरू हुआ है, तो आपको कम से कम आपको आपके पास समय ना हो जब जनगणना करने वाले लोग आपके पास आए तो आपको एक सुविधा जो है वो आपके फोन के ऊपर उपलब्ध है कि आप उसके ऊपर जा करके अपनी पूरी जानकारी वेरीफाई करके जो है वो उसके ऊपर डाल सकते हैं। सिर्फ जब आपका जनगणना करने वाले आपके घर में आएंगे, आपको सिर्फ जो आपके पास जो आपने जानकारी दी है उसका जो नंबर आया है सिर्फ आपने नंबर बताना है और आप शायद एक मिनट के भीतर जो है वो आप उस आपकी जनगणना का कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो इससे बड़ी सुविधा जो है वो कोई हो नहीं सकती।
1: जी सर, और सर अंत में चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न ये जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सफर में डिजिटल इंडिया को आप किस रूप में देखते हैं?
0: देखिए 12 वर्ष के सफर में अगर जुड़े तो ये तो उपलब्धियों भरा वो है कि अगर आपके कार्यक्रम में अगर आज मैं सुबह बैठ जाऊं तो शायद शाम हो जाए
1: जी।
0: अगर हर वर्ष का, अगर 12 वर्षों के हर वर्ष का जो है वो अगर ब्यौरा लेकर के आए, तो जिस तरह से कहा जाता है आज, क्योंकि हम तो राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो लोगों के बीच में जाना भी रहता है, तो जिस तरह का परिवर्तन जो है वो लोगों के जीवन में आया है, तो डिजिटल माध्यम जो है वो इतना आगे बढ़ जाएगा इसकी कल्पना नहीं थी, तो किसी ना किसी तरह से जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए ये 12 वर्षों का जो सफर है इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया ने जो है वो आपके आपको इतना सुरक्षित कर दिया है कि आपको अब जो है वो अपने घर के भीतर जो है वो धन नहीं रखना पड़ता, भय मुक्त होकर के जो है वो आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके भीतर एक आंतरिक सुरक्षा का भाव जो है वो पैदा किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो डिजिटल इंडिया की।
1: जी संजय शर्मा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी, हमारे संग साझा की, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: जी श्रोताओं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफर में केंद्र सरकार के नेतृत्व में हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम यही कामना करेंगे कि ये तरक्की और ऊंचाइयां यूं ही आगे बढ़ती रहें। आज के इस विशेष साक्षात्कार में बस इतना ही। वंदना रैना को दीजिए अनुमति और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।
2: जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संजीव शर्मा वीजीपी के प्रदेश प्रवक्ता से वंदना रैना की बातचीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: ओला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने लिखते हैं,
1: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओ, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओ, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए।

0: श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओ, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा
2: मैं
1: का रेडियो
2: जहाज पर नौकरी
1: किया
2: करता
1: है, जो रहस्यों और रोमांच
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
1: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: और को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर

ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सब

बादशाह ने मुझे अपने देश की सब ज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर

और लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे,

तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर

से प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर

0: कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। दोपहर के 12 बजे हैं और बिल्कुल हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। जो देश के लिए जीते हैं, जो वतन के लिए कुर्बान होते हैं, जिनकी सांसों में तिरंगा और कदमों में हिमालय बसता है, ऐसे हमारे वीर साहसी और जावाज सैनिकों को हमारा सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं

इसी गीत के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को इजाजत। सैनिक साथियों, जय हिंद। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार सखियों, सुनो सखी के इस विशेष अंक में आप सभी प्यारी सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे श्रोताओं का भी आभार अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति, और इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आज के दिन की एक खुशनुमा शुरुआत आप कर चुके होंगे। सखियों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हम घर और बाहर की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। क्या आप भी अक्सर थकान और कमर में दर्द महसूस करती हैं, या दिन भर के काम के बाद चिड़चिड़ापन सा लगता है? अगर हाँ, तो आज का दिन आपके लिए ही है, हमारी सखियों के लिए ही है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे योग की। जी हाँ सखियों, जो आपकी सेहत और खूबसूरती का सबसे आसान राज है। बहुत सी सखियों को लगता है कि योग बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग केवल कठिन आसन नहीं है, बल्कि खुद को समय देने का एक खूबसूरत तरीका है। चलिए अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे आसन अभ्यास जो आप घर बैठे आराम से कर सकती हैं। पहला है सखियों भ्रामरी प्राणायाम। रसोई में काम करते करते या सुबह बालकनी में बैठकर आप इसे कर सकती हैं। अपनी दोनों उंगलियों

की शांति को अपना दोस्त बनाने का दिन आ गया है। जी हाँ, परसों यानी 21 जून दिन रविवार को हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चाहे आप घर पर हों या किसी कार्यस्थल पर, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर आपने बनाना है। आज से ही खुद से करें एक छोटा सा वादा कि योग को अपनाएंगे और सेहतमंद जीवन पाएंगे। और चलिए कार्यक्रम में अब ये गीत सुनवाते हैं, और बहुत सी बातें हैं सखियों के साथ करने के लिए, करेंगे इस गीत के बाद।

हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई जी की। 19 नवंबर सन 1828 में वाराणसी के एक मराठी परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से लोग मनु बुलाते थे। सखियो, रानी लक्ष्मीबाई जी का व्यक्तित्व केवल साहस या युद्ध कौशल तक सीमित नहीं था। वे त्याग, वात्सल्य और असाधारण नेतृत्व की त्रिवेणी थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां चाहे जितनी भी हो और वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, नारी का हौसला और संकल्प उन पर भारी पड़ सकता है। सखियों, क्या आप जानती हैं कि बचपन में मनु के नाम से पुकारी जाने वाली इस बालिका ने महलों के आराम को छोड़कर घुड़सवारी, तलवारबाजी और मल्ल युद्ध में महारत हासिल की थी। खूब लड़ी, मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये कुछ पंक्तियाँ आज भी हमारे जहन में हैं, आज भी हमारे कानों में गूंजती हैं। जब झांसी पर संकट आया तो उन्होंने महल में बैठने की बजाय रणचंडी का रूप धारण किया। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम सुनो सखी में एक बार फिर लौट आए हैं और अब बढ़ाते हैं कदम रसोई की ओर, जहां छिपा है सेहत और स्वाद का खजाना। सखियों, गर्मियों के मौसम में हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों और धौलाधार की वादियों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला जंगली पौधा लुंगड़ू आज भी लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका से गहराई से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से सितंबर माह तक मिलने वाला लुंगड़ू एक प्राकृतिक सुपर फूड है। ये जंगलों में अपने आप उगता है, इसलिए ये पूरी तरह से जैविक और रसायन मुक्त है। अगर हम इसके सेहत के गुणों की बात करें तो ये आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर होता है। लुंगड़ू को कई क्षेत्रों में लिंगड़ तथा खसरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सब्जी और अचार दोनों में किया जाता है। आज लुंगड़ू का मदरा भी

कार्यक्रम के इसी अंतिम नगमे के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको बताते चलें कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विपिन कुमार का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।

परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी

आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है। जी बिल्कुल, हमें भी हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है। जी बिल्कुल, हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गीत

क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कला, गीतकार जिंदगी लिखी है। और इन्हीं गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है, और आपको साहिर लुधियानवी का कोई

भी रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं। जी कल और आएंगी नगमाए खिलती कलियां चुनने वाले।

0: साहिल के लिए लिखी हैं, वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं, कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
1: मैंने

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बगिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियाँ बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकंदा के लिए

की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। ये हमारे श्रोता बताते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत

रुबाई है दुखी, गीत अनमन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियाने की पंक्तियाँ लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपालदास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी और इतनी ज़बरदस्त फ़ैन हुई कि उन्होंने मुझे जहरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं। परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं? प्रश्न बहुत बड़ा है। सच बात है, अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे ज़रा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, ज़रूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारी गौशोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा नीरज, लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरू सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जबां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरू, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरू के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवाब आगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया। लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल

भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं बख्शी की, आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डी एन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अनजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है, परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की ये पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर, जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक

0: चलो सिंहस्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

0: इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
0: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
2: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
0: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
2: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
0: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
2: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
0: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
2: वार्ता ने लिखा,
0: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहा

0: 23 मई 1906 को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
1: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राज सत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया, पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।
0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी। अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरद हस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा, जिस मिसल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। शकील आजमी,
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने
3: तो सुनना न भूले। कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित

0: से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकार और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान

0: निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री

सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को

0: पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है, जो देश अपनी

0: सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत राम तत।

लहकी मृदंग ढनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न मच सग सगन का किट सक सग सगन का जी सगन नदा साधा किट सग सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचारों का। 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ये राशि लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। विकसित भारत रोजगार योजना अगस्त 2025 में शुरू हुई थी और अब तक देश भर में 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 30% महिलाएं हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता प्रदान करेगी। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना व सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले दिनों में वे खुद विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का दौरा कर डॉक्टरों के साथ संवाद करेंगे और आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा मशीनरी व उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के हर नागरिक के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को पाने का एक उपयुक्त माध्यम बनाया जाना समय की मांग है। नई दिल्ली में आज 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसे आज की जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित रूप से अपडेट किया गया है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे कई जटिल मामले हैं जिन्हें इस प्रणाली के माध्यम से सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के हर चरण, जांच और अभियोजन से लेकर अंतिम सजा तक तकनीक को प्रभावी ढंग से शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
2: 3.5 साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है, 75 महीना का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है, इन्होंने वो नहीं दिया। 4 वर्दियां हमारी ड्यू है वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है, उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
0: केंद्र सरकार 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती करेगी। ये क्षेत्रीय अधिकारी राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जमीनी स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इससे कार्यान्वयन आवश्यकताओं को समझा जा सकेगा और क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग दिया जा सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास, विकास व जन कल्याण के। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
0: भारत की विशाल और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत, हजारों वर्षों के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को अपने भीतर सहेजे हुए है। इसका संरक्षण हमारी राष्ट्र की विशिष्ट सभ्यागत पहचान को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, विकास और संवर्धन पर विशेष बल दिया है। देश भर में इस विरासत को सुदृढ़ और संरक्षित रखने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। प्रमुख पहलों के अंतर्गत प्रतिष्ठित स्थलों के जीर्णोद्धार, पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने, प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के संरक्षण तथा विरासत नगरों व तीर्थ सर्किटों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरोद्धार के लिए संचालित कार्यक्रमों ने भारत की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के साथ साथ आम जनता की पहुंच और पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही विरासत स्थलों के आसपास संपर्क सुविधाओं, शहरी नवीनीकरण, डिजिटल पहुंच और पर्यटन अवसंरचना में किए गए निवेशों ने स्थानीय आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है। विरासत आधारित विकास परियोजनाओं ने सतत पर्यटन को प्रोत्साहित किया है, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया है ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रह सकें। भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य स्मारकों, पुरावशेषों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध है। ये केवल अतीत के अवशेष भर नहीं है बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली

0: रही हमारी साझा स्मृति और निरंतरता को दर्शाते हैं। वर्ष 2014 से सरकार ने इन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। साथ ही विरासत विकास को आर्थिक प्रगति से जोड़ने तथा भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त विरासत संरक्षण को पर्यटन, आजीविका संवर्धन और सांस्कृतिक कूटनीति के साथ उत्तरोत्तर रूप से एकीकृत किया गया है। सितंबर 2017 में प्रारंभ और सितंबर 2023 में पुनर्गठित विरासत को अपनाएं 2.0 कार्यक्रम निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और सोसाइटियों के साथ सहयोग के लिए एक सुदृढ़ रूपरेखा तैयार करता है। ये राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों पर आगंतुकों के लिए अनुकूल सुविधाओं का विकास और रखरखाव बनाए रखने पर फोकस करता है। इसके लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अन्य प्रकार के योगदानों के माध्यम से मदद प्रदान की जाती है। इस पहल का लक्ष्य आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। मार्च 2026 तक विरासत को अपनाएं 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 30 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। प्रसाद योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में की गई थी। ये योजना पूरे भारत में तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थलों को विकसित करती है। ये बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा तथा आगंतुक सुविधाओं को बेहतर बनाती है। फरवरी 2026 तक मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 54 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1,726.74 करोड़ है। इन 54 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी की जा चुकी हैं। सोमनाथ प्रोमेनेड विकास परियोजना की लागत 47.12 करोड़ रुपए है। सोमनाथ अब एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप प्रसिद्ध है। इसी प्रकार केदारनाथ प्रसाद परियोजना ने पूरे केदारनाथ सर्किट में तीर्थ यात्रा सुविधाओं, पहुंच, स्वच्छता, आगंतुक सेवाओं और पर्यटन अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। IIM रोहतक ने अपनी 2021 की रिपोर्ट केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रसाद का मूल्यांकन में इस योजना की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। 2014-15 में प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट में पर्यटन अवसंरचना के एकीकृत विकास की प्रमुख योजना रही है। ये योजना विरासत, आध्यात्मिक, तटीय, मरुस्थलीय, बौद्ध, जनजातीय तथा इको पर्यटन से जुड़े गंतव्यों को कवर करने वाले एकीकृत पर्यटन सर्किट का विकास करने पर केंद्रित थी। कुल 5,290.33 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 76 पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोराट।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला इल्ला नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बाग

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है। आए कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो
1: जी,
0: पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का
1: हाँ
0: अचार
1: हाँ
0: भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान
1: उसको
0: रखना पड़ता है।
1: हाँ उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के और रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम। हाँ
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम बीगा बीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधरी रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शाहजहान फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियो अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
1: अभी। हाँ छोड़ा है मैंने अभी, मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है
1: जी, 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं, अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पढ़ते हैं खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है। हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल
1: भुगावली।
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए। बुगावड़ी।
1: यस मैम,
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वही तहसील खुरई पे साइड है भुगावली।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है, वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही से है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं।
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: साइकिल

0: किलोमीटर दूर है।
1: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
0: की? नहीं मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
1: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है?
0: या मैम।
1: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
0: मैं 9th में आ गई हूँ।
1: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
0: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
1: आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है।
1: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं?
0: हाँ मैम।
1: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
0: मैम अभी 1 साल पहले।
1: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं?
0: यस मैम।
1: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
0: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
1: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
0: यस मैम।
1: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
1: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: गांव सीवर के पास में पड़ता है। तो मेरे यहाँ जो सीवर है यहाँ पे एक राजा का महल है जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है। तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। और यहाँ पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
1: और आपके शौक क्या क्या हैं?
0: मैं मुझे सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना। मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
1: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियाँ जिन्हें अभी और इंतज़ार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हों, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है

0: रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बजने को हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए

पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी, तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ, मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फ़ोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फ़ोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई, और माँ भी दरवाज़ों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

0: माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।
1: बच्चे

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर

0: माँ ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती, पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,

0: दिल तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीज़ों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फ़ोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फ़ोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फ़ोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फ़ोटो और उनके फ़ोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमज़ोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। और कमज़ोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूँ ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहाँ जाना हो चली जाऊँ, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूँ।

0: ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली देवी को फ़ोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतज़ार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहाँ से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज़ देने लगे। विभा विभा, कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहाँ आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?
1: हाँ जी।

सुबह उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूँगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फ़ोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फ़ोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनभा की आवाज़ में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूँ इससे? अरुण की आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज़्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

0: खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, नट कर देगी, ताऊ से बड़ा कै पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी।
1: दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है, और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी,

आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5 बजे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will disperse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yozgar Yojana in New Delhi today. The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. Labour and Employment Minister Dr. Mansukh

0: Mandaviya said that since August last year, more than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under the scheme, of whom nearly 30% are women. The BJP today said that India's participation at the G7 highlights that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is steadily gaining the trust of the world's major countries with efficiency and competence. Addressing the media in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, despite not being a full member, India was invited at the forum and was seen taking a lead. He noted that during the summit, Mr. Modi proposed the International Mobilization Partnership for accelerating connectivity and trade, on which all countries expressed interest. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. President Murmu appealed all state governments and officials not to take the disease lightly because it is passed on from generation to another. She said efforts should be made to eradicate it completely because treatment is possible.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: Defence Minister Rajnath Singh today said that India's domestic defence production has increased from 46,000 crore rupees in 2014 to a record over 1,78,000 crore rupees in the last financial year. Mr. Singh also said the defence exports, which registered at only 1,000 crore rupees before 2014, have risen to nearly 40,000 crore rupees due to the growing global demand for indigenously manufactured Indian defence equipment. Mr. Singh was speaking after laying the foundation stone of a state-of-the-art 10,000-ton aluminium extrusion press at the Ordnance Factory of Yantra India Limited in Ambazari, Nagpur this afternoon. The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on Sunday, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. National Commission for Women has issued an advisory to all states and union territories calling for the immediate and effective implementation of comprehensive measures under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, POSH Act. The Commission said that the advisory recommends 18 measures for immediate action by state governments and district administrations. The advisory seeks to ensure that every workplace, whether in the government, private or organized or unorganized sector, strictly complies with the provisions of the POSH Act and fosters a safe, inclusive and gender-sensitive working environment for women. Benchmark domestic equity indices ended lower today, snapping a 5-day rising streak. The Sensex shed 607 points to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points to settle at 24,013. In badminton, India's Ashmita Chali has stormed into the women's singles semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game win over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:10 हुए हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण विज्ञान भवन नई दिल्ली से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
3: विज्ञान भवन चलें। नमस्कार। विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
4: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here and say in a short while, he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
3: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
4: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
3: बिल्कुल। और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
4: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
3: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में और हाँ बोलो इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों और शुरुआत से अब तक का सफ़र देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
4: उसमें आती है। People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार।
3: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
4: एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जिनको पहली बार नौकरी मिली
3: है।
4: दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एलिजिबिलिटी इज न्यू एम्प्लॉयज जॉइनिंग एन EPFO that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions and then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000, right? And then the disbursement will be in two stages, that is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the, so that more and more people get employment. And they also, the employer also earns, the employees also earn.
3: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिम्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
4: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
3: Hmm.
4: It is

0: go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 साल.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got their employment letter, the job letters, and that's total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
0: yes.
1: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. yes. तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी

0: की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को ₹1,000 प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को ₹2,000 हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को ₹3,000 प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: ना? एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोर जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज. नो द स्कीम एम्स टू मेक इट इजियर फॉर यंग पीपल टू एंटर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce, and then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत, और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच, और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स, एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इन फैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स, एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल, सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू देयर फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
0: An amount will be transferred.
1: Yeah.
0: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that

0: The government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बोके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. So and I am telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. The magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left, by the Minister of State. And the

0: they've always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी? और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया, नहीं?
0: Yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतज़ार तो कुछ ही पलों का है, ज़्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद द अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग अ सीट ऑन द डेज, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं
0: अभिनंदन. द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome
2: एक
0: remarks.
2: बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: By श्री मनसुख मांडविय, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार

0: पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है।

0: जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
0: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
2: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है।

और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति
कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि
और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहल

मिलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है।
दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं,
नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे।
मुझे भारत

0: की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:33 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजां गराई दियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्रहण दिया सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहन जो केसरों की दुआ जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों टियाले पर आज मुझे कने जे हारिया जी हैं, हारिया जी तो भी राम राम कने थोड़ा दिया गा आई आ।
1: केसरो जी तो समझो भी राम राम कने अपने टियाले दे सारे किसान साथियों जो और भाई बहन जो सभी जो दोनों हाथ जोड़ी करी नमस्कार।
0: बिल्कुल कने हरिया जी मुझे लगा था कि अजकल दिखा कार्यक्रम जोड़े इनसे ग्राएं शुरू हुई हो ब्याह शुरू हुई हो कोई मुंडन हुआ दे कोई ब्याह हुआ दे कोई प्रतिष्ठा हुआ दी ता धामा जोड़े इनसे अजकल लगी हैं ना जी, कने रौनका जोड़े इनसे फिर तो शुरू हुई हैं, कने जालू भी ऐसे तीज त्यौहार लगते हैं ता सांझो दिख रौनका तो मिल दी हैं, कने कार्यक्रम च अपनी अलग गल है कि हाँ आई करिए इतों जानकारियां भी साझा करते हैं, कने सोगी ही अपने किसान भाई बहन जो लोग गीत सुनाई करी तिना दा जड़ा काम करी के जड़ा एक थकान हुंदी है से भी हटान देन है ना जी,
1: जी।
0: ता हरिया जी आज जड़ी जानकारी तुहा लेकर आए हो से जरूर तुहा किसान भाई कने करनी है साझी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, तो देख आज केसरो जी हाँ अपने जड़े किसान साथी है उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जड़े कृषि जलवायु क्षेत्र है उन्होंने बारे च गल करनी, तो देखा सारे ते पहले तो ये दसी दे कि हिमाचल प्रदेश जो ऊंचाई तापमान बरखा कने कृषि दे आधार पर जे ऐसे लगभग चार कृषि जलवायु क्षेत्रां च बंटी रहा, और उस च देखा सारे ते पहले तो गल करिए हैं जड़ा उप उष्ण कटिबंधीय निम्न पहाड़ी क्षेत्र आ।

0: बिल्कुल
1: जिस दी ऊंचाई दे हिसाब ने अगर गल करिए तो लगभग 350 ते 900 मीटर है।
0: जी
1: और इस विच अहां दे जिहड़े प्रमुख जिले जियां ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़े दा भी कुछ भाग इस विच आउंदा। तां बोलने दा मतलब है कि जिहड़े अहां दे प्लेन जिहड़े क्षेत्र है
0: जी जी
1: इस च जे ऐसे आउंदे। और इन्हां दी जिहड़ी मुख्य फसलां गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, सरसों, तां इह जे आ इस विच जे पैदा हुंदी।
0: बिल्कुल जी
1: और
0: बिल्कुल
1: दूजा क्षेत्र जे आ उस जो उप सम शीतोषण निमन मध्य पहाड़ी क्षेत्र दे नौं ते जाणा जांदा, जिस दी ऊंचाई लगभग 900 ते 1500 मीटर दे बीच हुंदी। और उस विच जिहड़े जिले तां
0: बिल्कुल जी इन्हां च जिहड़े

0: रहने यानी सेब, नाशपाती, आलू, राजमा, कने, मटर। इसके अलावा अगर हाँ गल करें तो अगला जोड़ा है ऐसा है शुष्क समशीतोषण पहाड़ी क्षेत्र है ना जी। कने
1: जी
0: इसकी ऊंचाई की गल की जाए तो 2400 मीटर से ज़्यादा होंगी है। कने जोड़े प्रमुख जिले इस आते हैं सैन लाहौल स्पीति और किन्नौर के उपरी भाग।
1: जी
0: कने फसलों की गल की जाए तो इन्हों फसल जड़ियाँ से हैं
1: जौ, काला जीरा, मटर, आलू।
0: जी।
1: और क्योंकि गल ये है कि जेडे आते सारे के ऊंचाई वाले क्षेत्र है उत्थी बरखा भी घट होंगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उस विच जे है तो यही फसलां तैयार होंगी है।
0: बिल्कुल
1: तो बोलने का मतलब कि अहम का जोड़ा क्षेत्र है, अगर जलवायु की गल करिए एक प्लेन, एक थोड़ा उसते थोड़ा जहा पहाड़ी और
0: पहाड़ी
1: बिच
0: इलाका आ
1: प्लेन
0: जाता।
1: भी,
0: बिल्कुल जी
1: और उसते
0: बिल्कुल
1: थोड़े हाइट वाले क्षेत्र, और ये चौथा जोड़ा है शुष्क समशीतोषण की गल की, तो
0: जी
1: इस विच जे तो 2400 से ज़्यादा जी हाइट है
0: सह होंगी है।
1: सह
0: बिल्कुल
1: क्षेत्र आते।
0: बिल्कुल। तो हरिया जी दिखा हूँ टियाले पर आई करिए हाँ जानकारी जी इसे देती है। कने हूँ जोड़ा ऐसे किसान भाइयों जो हाँ लोक गीत सुनाना है
1: जी
0: क्योंकि कि बेला भी जोड़ा ऐसे किसान भाइयों जो जोड़ा है लोक गीत सुनाने का वाद है। लेकिन कुछ एक स्नेह जोड़े इनसे भी यहाँ तीन तक पहुँचाने तो सुनते हैं गीत कने कुछ स्नेह
1: जी

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
4: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
5: तो इंतजार कैसा, 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
6: किसान साथियों, संजय दे वेला है और इस टाइम तुहा सुने आए प्यारा दिया लोक गीत और कुछ ही किसने है तुहा सुने। तो हरिए जी, हुण तुहा हाँ जड़ा से किसान भाइयों कने थोड़ी दी गलबात भी करनी है कि हुण बरसात दी जड़ी ऋतु है से होआ कर दी है, तो बरसात च हुण बड़े सारे काम जड़े से होने ना जी।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो देखा बरसाती सारे दे पहले तो हाँ एक काम करना इस बारी कि पौधे जी असें ज़्यादा तो ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी, क्योंकि बरसाती असें जितने भी पौधे लगाते लगभग सारे चली पाते और ये 2-3 महीने जियां बरखा लगी रहती तो पौधे जे असें बिल्कुल मजबूती आने जे असें जड़ भी पकड़ लेंगे और उन्हें जो फिर अगे जे असें खत्म होने का खतरा नहीं होंगे।
6: बिल्कुल, और बहुत सारे किसान भाई जड़े साढ़े से तिना ने सोचे होंगे कि हाँ कोई ना कोई कलम जड़ी इसे लगानी है, और कलम लगाने वास्ते जड़ा ऐसे बरसात की ऋतु जी आने वाली है जी जुलाई का महीना शुरू होना है, तो तुहां इस बहुत सारी कलमा का तुहां दोबारा तो कलमा तैयार करी सकते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे जड़े से भी तुहां तैयार करी सकते हैं। और बरसात की ऋतु ऐसी होंगी है कि जिस तुहां कोई भी पौधा अगर लगाई देंगे और इसकी ठीक ठाक देखभाल कर दें तो जरूर फलीभूत भी होंगे है।
7: बिल्कुल जी, तो देखा सारे वड्डी केसरो जी यही गल है कि अहां दा अगर पर्यावरण स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा तो उसते ही अहां दा चाहे शरीर आ चाहे मन आ बिल्कुल ठीक रहना। तो बाकी होर चीज़ा जी देखा अजकल तुहें देख दे मतलब बाजारां च देखा कितनी भाग दौड़, कितना प्रदूषण, तो अहें गाँव के लोग देखा सारे ते खुशकिस्मत तो यही है कि एक देखा शुद्ध वातावरण च रहिंदे, साफ जे शुद्ध हवा
6: बिल्कुल
7: अहां जो मिलती और लगभग तुहें बोला कि इं जे इत्थी उम्र जे अहां दी बद्दी जांदी।
6: बिल्कुल जी,
7: और दिल्ली देखा तुहें और बड़े बड़े शहरां च देखी लिया जिती मतलब सांस लेना भी एक बड़ा मुश्किल है।
6: बिल्कुल, गलाने का ही मतलब है कि हरियाली जड़ी से बड़ी जरूरी है और हरियाली जो बनाए रखना भी बड़ा जरूरी है, और साड़ा किसान जड़ा ऐसा इस पासे तो जरूर ध्यान रखता है, लेकिन किसानों के अलावा भी जड़े साड़े लोग हैं ना तिना जो हाँ ये गलाना चाहेंगे खास करके जो बाकी स्रोत हैं कि भाई तुहां भी इस सहयोग दिया मतलब पौधा रोपण जड़ा ऐसे करा, और बरसात का जड़ा समय शुरू होने वाला है तो तुहां अपनी पूरी तैयारी रखी सकते हैं। थोड़ी भी जगह होए तो तुहां कोई ना कोई बूटा जड़ा ऐसे लगाई सकते हैं। हरिया जी, हुण मुझे लगा था कि फिर ते लोग जानकार जी ऐसे किसान भाइयों जो अहां सुनानी है,
7: तो
6: चल दें अहां भी सुन दें कने सोगी ही सुनान दें किसान भाइयों जो प्यारा दिया लोक गीत
7: जी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: किसान साथियों, हुण चलदे चलदे कार्यक्रम चाहां फिर ते सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत।

किसान साथियों इस लोकगीत कने ही कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां दा समय इत्थों ही संपन्न हुआ करता है। जाने ते पहले तुहानू दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग सानू दित्ता सुनील शर्मा ने और कार्यक्रम प्रस्तुत करता जतिंदर पाल सिंह। हुण अहां दोनों जो दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद, जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजें कराई दियां। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा

0: पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
1: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जाहिर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई, उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओस तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है, और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
0: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
2: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश को इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
1: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी, और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
0: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
0: अब हम रुख करते हैं

0: एमपी नथैला साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहाँ पर जो एक एक्शन रहा?
1: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था और जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहाँ पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
0: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका

0: विकसित भारत की तरफ है। इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
1: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश

0: अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है। चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें, तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति

0: देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
1: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है, जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात
0: जी
1: करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
0: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में रिले किए जाएंगे।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
6: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
5: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार। डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कुछ युवा लाभार्थियों से संवाद भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनका कौशल विकास किया जा रहा है।
8: योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ

0: को काम दिया है। इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है।
1: इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सांसद सुरेश कश्यप ने भी समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का लोकार्पण भी किया। इसके अलावा उन्होंने 8.25 करोड़ रुपए से बनने वाले नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और सोलन जिले के नालागढ़ में प्रदेश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन योजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश विश्वविद्यालय को इस दिशा में नए शोध करने चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर आज नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। शांडिल ने बताया कि टीबी उन्मूलन की दिशा में हिमाचल तेजी से आगे बढ़ा है और उच्च जोखिमों वाले गांवों में संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग, एक्सरे जांच और टीबी मरीजों की देखभाल जैसे मापदंडों में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के बगैण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इन पर 1.12 करोड़ रुपए की लागत आई है। रोहित ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने CBSE पाठ्यक्रम शुरू किया है और पहले चरण में राज्य के 151 स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में स्कूल को भी CBSE से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में खाली पड़े 15,000 पदों में से 9,000 पद भर दिए हैं, जबकि अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को टालने का आरोप लगाया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत हुई है और जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 12 जिलों में से 10 में भाजपा अपने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार के डर से इनके चुनाव नहीं करवा रही है।
2: वर्तमान कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, उसका जनादेश आया। अरे जब पार्टी का पदाधिकारी चुनाव लड़ता है, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो वो अपने आप में एक सिंबल की तरह ही देखा जाता है। चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने जिताया। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद में से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। जिला परिषद में जहां भाजपा का बहुमत है, वहां डेट नहीं दी जा रही है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव। जहां ब्लॉक समितियां भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर ज्यादा हैं, वहां पर डेट नहीं दी जा रही है ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए।
1: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने किशाऊ बांध और रेणुका बांध जैसे मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया था और उसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इसका बेवजह श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
2: कितना प्रभावी ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा है, शाह डैम को लेकर के, रेणुका डैम को लेकर के, इस सारी चीजों को लेकर के, वही आधार बना, उसी बात को लेकर के उन्होंने अपना पक्ष आगे रखा और धन्यवाद उनको करना चाहिए केंद्र की सरकार का।
1: राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी। राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। ये कर्मचारी प्रदेश के अनेक स्थानों पर अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर रहे हैं। नाहन में भी इन कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एचआरटीसी चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले लगभग 75 महीनों से उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है और मेडिकल भत्तों के रूप में भी लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। संघ ने राज्य सरकार व निगम प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया है।
3: 3.5 साल बीत गए, इस सरकार ने निगम के कर्मचारियों का सिर्फ शोषण किया। निगम के कर्मचारियों को सैलरी टाइम की नहीं है, 75 महीना का ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है इन्होंने आज तक नहीं दिया। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट बनता है जो कि 4 साल का है इन्होंने वो नहीं दिया। 4 वर्दियां हमारी ड्यू है वो ये देते नहीं। 8 महीने से प्रमोशन बंद है वो ये करते नहीं। सैलरी तो हर महीने हमारा राइट बनता है उसको भी लेट रिसीव करते हैं।
1: राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में अनुकंपा के आधार पर 3 लोगों को नौकरी प्रदान की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इन लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी गई नौकरी दुख की घड़ी में 3 परिवारों का सहारा बनी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में लगभग 7,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में दृष्टिबाधित एसोसिएशन और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से सृजित हुए 70 लाख रोजगार। डीबीटी के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को वितरित की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से टीबी मुक्त हिमाचल का लक्ष्य हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव टालने का लगाया आरोप। और 21 जून को होगी नीट परीक्षा। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगा राज्य परिवहन निगम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
5: 1,015-1,700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
7: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
8: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा, जिसमें आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष पर सम्मानित श्रोता श्री बोधराम वर्मा से भेंट वार्ता आपको सुनवाई जाएगी।

0: भेंट करता सपना ठाकुर। इसी आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस विशेष अवसर पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमारे साथ ऐसे सम्मानित श्रोता उपस्थित हैं जो वर्षों से रेडियो और आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। इन्होंने रेडियो के स्वर्णिम दौर को बहुत ही करीब से महसूस किया है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी यादें, अनुभव और आकाशवाणी से उनका भावनात्मक रिश्ता। ये श्रोता हैं बोधराज वर्मा जी। वर्मा जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: बोधराज वर्मा जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए और हमें ये बताइए कि आकाशवाणी से आप कब से जुड़े हैं।
2: देखिए, मैं तहसील करसोग, जिला मंडी, गांव तलहन का रहने वाला हूं। मैं रेडियो से सन 1981 से जुड़ा हूं। हालांकि मैं दृष्टिहीन हूं, लेकिन जो रेडियो की जो ध्वनि है जो मेरे कानों में आती है, उससे मैंने काफी महसूस किया और मैंने इतनी प्रेरणा हासिल की कि मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूं। और रेडियो मेरा एक बहुत बड़ा साथी रहा है जीवन में।
1: बोधराज वर्मा जी, आपने कहा कि रेडियो से मुझे काफी प्रेरणा मिली, तो जीवन में आगे बढ़ने की क्या प्रेरणा मिली आपको रेडियो से?
2: आगे बढ़ने की, जैसे पहले तो बालपन था जी, मेरा बालपन। उसके बाद जब मैंने होश संभाला अपना, तो जब मैं रेडियो सुनता रहा तो मैं प्रेरित होता रहा, रेडियो से प्रेरित होता रहा। और माता पिता से तो प्रेरणा मिली, पर रेडियो ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। जब मैं कुछ रेडियो से सीखा, फिर मैं स्कूल चला गया अंध विद्यालय में, वहां से वहां भी पढ़ता भी था और साथ में वहां भी मैं रेडियो सुनता था। मुझे कोई रोक टोक नहीं थी कि भाई रेडियो मत सुनो आप।
1: जी, बोधराज वर्मा जी, आपको याद है कि आकाशवाणी से आप कब और कैसे जुड़े और इस समय का अनुभव आपका कैसे रहा जब आपने पहला कार्यक्रम सुना?
2: जी देखिए, पहले के कार्यक्रम से आपको अवगत करवाता हूँ। जब से मैंने शुरू किया प्रोग्राम 1981 से, पहले आपके कार्यक्रम आते थे बच्चों के लिए, जैसे चुन्नू मुन्नू, बाल गोपाल, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और जैसे आपका आपकी चिट्ठी, आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता, हमें लिखे कार्यक्रम आता था, विज्ञान और जीवन कार्यक्रम आता था, उन प्रोग्रामों को मैं सुनता था। और नाटक भी ऐसे ऐसे प्रसारित होते थे कि जी करता कि नाटक जो है समाप्ति ना हो। आपको मैं बात बताऊं, एक बार कला ठाकुर जी का इंटरव्यू था रेडियो पे, उनसे पूछा गया था कि भाई शायद आपने 500-600 नाटकों में लगभग भाग लिया होगा। फिर कला जी ने कहा कि आप 500-600 नाटकों की बात कर रहे हैं, मैंने कम से कम भी कोई 7-8 हजार नाटकों में भाग ले रखा है। उस वक्त कार्यक्रम प्रसारित होते थे आपके चुटकुले, आपके गीत, चित्र ध्वनि, इस सभी कार्यक्रमों को मैं सुनता आ रहा हूं और पसंद भी करता। हालांकि वो प्रोग्राम थोड़े लुप्त हो चुके हैं, प्रसारित नहीं होते हैं, तो मैं सोचता हूं, समझता हूं कि उन प्रोग्राम का प्रसारण भी होना चाहिए, क्योंकि उन प्रोग्राम में बहुत दम था, बहुत ताकत थी उन प्रोग्रामों में।
1: बोधराज जी, आपको आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम उन दिनों पसंद आया करते थे?
2: उन सभी कार्यक्रम आते, जैसे मेरा एक प्रिय प्रोग्राम था सैनिकों के लिए, और क्या नाम, सुबह वंदना आता, अब भी आता है वो, और उन प्रोग्रामों को मैं सुनता हूँ। जैसे बाकी तो जैसे सुनहरी किरणें, कृषि जगत, आपका धारारी गीत, सुगम संगीत और हिम दर्शन कार्यक्रम, ये पहले से चलता आ रहा है। आपका जो एक कार्यक्रम आता था मन भावन, गीत पहाड़ा रे, ये कार्यक्रम सुनता रहा और इन प्रोग्रामों में इतना आनंद आता था कि मन खुशी से बाग बाग हो जाता।
1: और जैसे कि अब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आप क्या इस सफर को कैसे देखते हैं?
2: अच्छा लग रहा है जी, इसमें भी बहुत अच्छा, आगे के जो आपके प्रोग्राम है बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आप बजाइए, नए गाने भी बजते हैं, बहुत खुशी की बात है, क्यों जैसे नए श्रोता भी आपके जुड़ रहे हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं कि पुराने श्रोता भी हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से अभी भी है जो प्रोग्रामों को सुनते हैं। ये नहीं है कि रेडियो को नहीं सुनता, कि

0: रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप खेत खलिहान में भी सुन सकते हैं, पशुओं के साथ भी सुन सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात यदि आपको बताऊं, तहसील करसोग की और जिला मंडी की, तो यदि भेड़ बकरियों के पास जाएंगे लोग और पशुओं के पास जाएंगे, तब भी क्या नाम है, बैग में रेडियो डाल के ले जाएंगे। और मैं अपनी बात बताता हूँ कि यदि एक दिन मैं रेडियो ना सुनूं तो मैं रेडियो से बगैर बेचैन हो जाता हूँ।
1: बोधराज जी, जैसे आपने कहा कि पुराने गीत भी बजने चाहिए,
0: जी
1: तो पुराने और नए गीत दोनों हमारे रेडियो से, आकाशवाणी शिमला से आप सुनते आ रहे हैं। ये होता है कि अब नई पीढ़ी का भी कुछ ध्यान हमें रखना पड़ता
0: बिल्कुल
1: है
0: रखना पड़ता है जी, बिल्कुल
1: ना? जो पुराने श्रोता हैं, जो नई पीढ़ी हमारी आ गई युवा हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो तालमेल तो बनाकर चलना पड़ता है, तभी आकाशवाणी आगे बढ़ पाएगी,
0: बिल्कुल जी।
1: है
0: मैं
1: ना?
0: तालमेल आगे चलना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जब पीसी में और एफएम में क्या नाम बढ़िया कार्यक्रम चलते हैं तो मैं दोनों रेडियो को चलाता हूं। लोग हैरान होते हैं कि भैया दोनों रेडियो के, यार आप कैसे हैं, दोनों रेडियो को कैसे सुनते हैं। मैंने कहा एक कान में एक रेडियो, दूसरे कान में दूसरा रेडियो, क्योंकि मुझे आनंद आता है, क्योंकि रेडियो ने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी कि रेडियो को मैं तब तक सुनता रहूंगा जब तक मेरे सीने में सांस रहेगी।
1: और रेडियो से जानकारी भी मिलती रहती है।
0: अधिक जानकारी, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मैं स्कूल नहीं गया था तो मैंने बहुत सारी जानकारी रेडियो से प्राप्त की, और ऐसे ऐसे कलाकारों को मैं रेडियो से सुनता रहता था, जैसे परशुराम तोमर जी, हेतराम तनवर जी, और अन्य जो कलाकार हैं, शिवशरण ठाकुर जी, तो अन्य जो कलाकार हैं क्या नाम, उनके गाने सुनता था। और साथ में देखिए आपका ये कार्यक्रम चलता है गांधी चर्चा, मैं डॉक्टर हुकम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि डॉक्टर साहब, उनका जो एक कहानी आती है एफएम से भी आती है, कहानी मुंशी प्रेमचंद की जी
1: जी
0: की, उनको भी मैं बड़े लगन से सुनता हूँ। और एक सुझाव भी देना चाहूंगा, जैसे आपका गुड मॉर्निंग हिमाचल आता ना,
1: जी जी
0: तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम है। कि मैं सोचता कि सप्ताह में 2 दिन ऐसे रखे, एक कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों का होना चाहिए और उस प्रोग्राम का नाम जो है सूरज के साथ साथ रहना चाहिए।
1: जी
0: और इसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि मैं विविध भारती से भी प्रोग्राम सुनता हूँ, वो क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी आकाशवाणी का एक केंद्र है, रविवार को वो प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम का नाम है उजाले उनकी यादों के। तो उस प्रोग्राम में जो फिल्में गायक कलाकार गीतकार संगीतकार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज भी हमें मतलब सुनने को मिलती है वहां से, मतलब गौरव होता है इस बात का। तो मैं समझता हूं कि यदि आकाशवाणी शिमला से भी ऐसा एक कार्यक्रम प्रसारित हो तो 4 चांद लग जाएंगे और पुराना जमाना शायद एक बार फिर लौट के आ जाएगा, और उस प्रोग्राम का नाम जो है पुराने गीत पुरानी यादें रहना चाहिए।
1: जी, बोधराज वर्मा जी, आपके अनुसार आकाशवाणी के लोक संगीत, संस्कृति और बोलियों को आगे बढ़ाने में क्या योगदान रहा है?
0: पहले तो बोलियों के कार्यक्रम जो होते थे, जितने भी बोलियों के कार्यक्रम में, उसमें पहले भेंट वार्ता के लिए लोगों को बुलाते थे उस टाइम तो, और उस टाइम जो कार्यक्रमों की जो रूपरेखा दी जाती थी उस वक्त बताया जाता था उसमें कि भाई इस बोलियों के कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आप ये चीज सुनेंगे। लेकिन आजकल वो सिलसिला थोड़ा कम खत्म हो चुका है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, तो बोलियों के कार्यक्रम भी आपके बहुत अच्छे हैं। और जब मैं हेलो डॉक्टर की बात करता हूँ, लोकवाणी की बात करता हूँ, तो मैडम सपना जी और डॉक्टर हुकम शर्मा जी दोनों इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। जब इस प्रोग्राम को पेश करते हैं तो बाग बाग हो जाता है, और मैं तो आप सुनते ही होंगे कि मैं तो हर एक प्रोग्रामों में फोन करता हूँ, और ऐसे भी जब अच्छा प्रोग्राम होता है, जब रेडियो के सुबह प्रोग्राम होते हैं, तो मैं डिप्टी रूम को दूरभाष करता हूँ, डिप्टी रूम वाले मेरा फोन सुनते हैं। और रहा नहीं जाता, पहले तो आप जानते हैं कि पत्रोत्तरी कार्यक्रम था, अपनी प्रतिक्रियाएं जो पत्रों के माध्यम से भेजते, आजकल वो सिलसिला नहीं है। तो मैं श्रोताओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे आप नियमित रूप से रेडियो सुनते हैं तो पत्र भी भेजिए रेडियो के लिए, ताकि वो पत्रों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाए। हालांकि फोन इन कार्यक्रम चले हैं, अच्छी बात है, लाइव बात होती है, लेकिन पत्रों का जो मजा है वो अपना ही मजा है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप लोगों के अधिक से अधिक पत्र आए, तो मैं नहीं समझता कि जो आकाशवाणी शिमला में जो अधिकारी महोदय जी बैठे हैं वो पत्रों उत्तरी कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, और हमारे मेरे शायद मेरे दिए हुए सुझाव पर जरूर गौर करेंगे।
1: अच्छा, आप हमें ये बताइए, आकाशवाणी से जुड़ी कोई याद या घटना जो आपके बहुत करीब रही हो?
0: बिल्कुल जी, घटनाएं तो काफी हुई है, वैसे तो मैं सुन के ही मैंने महसूस किया है, काफी काफी घटनाएं ऐसी है। देखिए जैसे मैं पुराने अनुसरों की बात करता हूँ, जैसे शांता वालिया जी और वो भी हमारे बीच में नहीं है, कुमारी कला ठाकुर जी हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग जब थे आकाशवाणी शिमला में, तो उस वक्त तो चार चांद लग जाते थे। और मैं तो ऐसा था कि क्या नाम, नियमित रूप से सुनता था और अब भी सुनता आ रहा हूँ। मैं तो सच्ची बात बताता हूँ आपको, जब तक आप लोगों ने रात को 11 बजे जय हिंद नहीं, तब तक मैं लगातार सुचारू रूप से आकाशवाणी शिमला के तमाम प्रोग्राम को सुनता रहा हूँ, सुनता हूँ और पसंद भी करता हूँ जी।
1: बोधराज वर्मा जी, आकाशवाणी जन जन की वाणी रही है और आकाशवाणी की पहुंच घर घर तक रही है। जैसे आपने कहा कि खेत खलिहान तक भी आकाशवाणी की पहुंच रही है,
0: जी हाँ,
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वर्षों से आकाशवाणी शिमला से जुड़े हैं, तो जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं या चलती आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है लोग इसका कैसे फायदा उठाते हैं?
0: देखिए जी, जब जानकारी आप रेडियो के माध्यम से देते हैं ना जी लोगों को, और लोग सुनते हैं उसको, तो लोग बहुत सारे आम पढ़े लिखे तो उठाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उस जानकारी से अवगत होते हैं और उस जानकारी से बहुत बड़ा लाभ उठाते हैं वो लोग भी।
1: और जैसे कि आज के समय में, जैसे मोबाइल का समय है, इंटरनेट का समय है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि रेडियो की क्या प्रासंगिकता है, क्या अहमियत है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है?
0: प्रश्न आपका बहुत सराहनीय है। हालांकि आज का देखिए, भले ही आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लोग मगन है, लेकिन रेडियो रेडियो तो तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि रेडियो का अपना ही आनंद है। मैं आज के कल के युवा पीढ़ी को भी मैं अवगत करवाना चाहूंगा कि भले ही आप लोग नेट देखते हैं, नेट में ना जाने कितने कार्य कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन रेडियो के लिए प्रोत्साहन जरूर दीजिए आप। यदि रेडियो को प्रोत्साहन देंगे तो अधिक से अधिक जो है प्रेरणा मिलेगी। यदि हम अपनी पुरानी संस्कृति को कायम रखेंगे तभी हमारी जो है पुरानी धरोहर है ये कायम रहेगी, नहीं तो निकट शीघ्र ही ऐसा समय आने जा रहा है कि कभी हमारी जो पुरानी संस्कृति है ये कभी ढूंढ के भी नहीं मिलेगी।
1: लोक संगीत को लेकर आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है?
0: बहुत अच्छा जी, लोक संगीत में तो मैं जैसे प्राइमरी चैनल की बात करता हूँ मैं, इसमें भी जैसे आपका एक कार्यक्रम आता है पहाड़ी संगीत आता है 7:45 पे सवेरे, और आपका जो ये 2:30 बजे आता है हिम गुंजन, और ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। फिर धारा गीत कार्यक्रम आता है, ये भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और जैसे बोलियों के कार्यक्रम में गीत संगीत, तो ये पहाड़ी संगीत गाने जो सुनाए जाते हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें तो प्रेरणा मतलब प्रेरणादायक बात है ये, और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम अच्छे नहीं है। और जो उद्घोषक हैं आकाशवाणी शिमला में भाई बहन उद्घोषक, उनकी अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छी है और कार्यक्रम भी इतना अच्छा पेश करते हैं कि मतलब एक अपने मन में जो जागरूकता हो जाती है कि भाई मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग आकाशवाणी शिमला में बरकरार रहे, बहुत भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ।
1: बोधराज वर्मा जी, आप आकाशवाणी के लोक गायक भी हैं, तो दो पंक्तियां सबको सुनाना चाहेंगे इस
0: बिल्कुल
1: अवसर पर?
0: बिल्कुल, दो दो लाइनें सुनाने जा रहा हूं मैं। बसना पहाड़ा रा चंगा, बसना

0: दें दे कड़जू जो ठंडा, बसना पहाड़ा रा चंगा, बसना पहाड़ा रा चंगा ओ मित्रा, बसना पहाड़ा रा
1: बहुत
0: चंगा।
1: बढ़िया बोधराज वर्मा जी, आज आपने अपने विचार, यादें और अनुभव आकाशवाणी शिमला के साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं, संस्कृति और विश्वास की कहानी है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सम्मानित श्रोता बोधराज वर्मा जी से भेंट वार्ता। और भेंट करता थी सपना ठाकुर, हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
3: कागज कलम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

0: this June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
3: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
2: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
3: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
2: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
3: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC apply।
4: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
5: विविध संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए जोश बराज को।

आप सुन रहे थे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी

0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मी और गोद।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से 8:45 पर और रात 9 बजे News@9 रिले की जाएंगी।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार

0: ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
7: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
8: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
8: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Gold Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matrushakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rairangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The Apex Court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity by taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, first secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
9: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorists as state policy. And yet, Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
8: Mr. Singh said India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain integral and inalienable part of India.
10: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that passport delivery has now become completely democratized as it is swift, secured and decentralized. Addressing the annual Regional Passport Officers Conference in New Delhi, Dr. Jaishankar said that the passport service is accessible to remotest corner of the nation. He said Indian passport is treated with respect and with confidence internationally.
11: As our foreign policy establishes India as a Vishwa Bandhu, the Indian passport is treated with respect

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं और आज की फिल्म है चलो इश्क लड़ाएं। ये फिल्म सन 2002 में बनी एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अजीज सोजावल ने किया है। इसमें गोविंदा, रानी मुखर्जी, जोहरा सहगल और कादर खान ने अभिनय किया है। फिल्म का शीर्षक गोविंदा की पिछली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के शीर्षक गीत से प्रेरित है।

चलो इश्क लड़ाएं। इस फिल्म के गीत एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के गीत सोनू निगम, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए हैं और सभी गीतों के लिए संगीत हिमेश रेशमिया का है।

0: लव पे किसी का नहीं शोर, क्या करो दिल मांगे मोर, लव पे किसी का नहीं जोर, क्या करो दिल मांगे मोर,
1: दिल मांगे मोर।
2: So baby, now you really know what Fanda means, yeah? Fanda is love. Fanda is life.
3: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से और आज की फिल्म थी चलो इश्क लड़ाएं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में राष्ट्रीय खेल पत्रिका और रात 10:00 आकाशवाणी शिमला से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित रेडियो रिपोर्ट रिले की जाएगी। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सीपीआरआई में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, आज शाम 19 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इस योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई, जबकि सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रत्येक माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। इस योजना के तहत देश भर में 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा आज शाम सीपीआरआई यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में एकत्रित लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सीपीआरआई के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के माननीय श्रम एवं रोजगार उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप, स्थानीय विधायक श्री हरीश जनार्था भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर में आयोजित कार्यक्रमों में एकत्रित हुए गणमान्य व्यक्तियों तथा लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। 70,00,000 फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके और आज इन्हीं में से करीब 10,00,000 युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में

0: छह महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: शिमला सीपीआरआई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय संबोधन में अपने उद्गार

0: करते हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय श्रम एवं रोजगार, उद्योग तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा,
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इसका मकसद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रोजगार के साधन किस तरह से बढ़े, वो मकसद रहा है। और एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे कहा है कि 15,000 रुपये दिया जाएगा, और इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है उनको भी जो है वो इंसेंटिव के रूप में जो इस स्कीम में किया गया है। और इस स्कीम का मकसद ये है कि जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो एक अच्छा रिलेशन बने और रोज़गार के साधन जो हैं वो बढ़े। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट से है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हर सरकारी क्षेत्र में इस वक्त नौकरियों में सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे हमारे बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसमें नौकरियों की जितनी गुंजाइश है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मगर इस स्कीम का मकसद ये है कि प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के साधन बढ़े और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे उद्योग हैं, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो जो है वो बढ़े। हमने हिमाचल गवर्नमेंट ने तो हमने इसको पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है। जैसे बहुत सारे हमारे कोड्स है, हमारे रूल्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, वो बहुत पुराने और आउटडेटेड है। लेबर एक्ट में भी जैसे हमने भी हमारे चार कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये चारों कोड्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि लेबर लॉज बहुत सारे थे पहले, मगर वो सारे लेबर लॉज को ख़त्म करके ये जो चार कोड्स हैं जिसका मैंने भी जिक्र किया है, जिसमें सारे के सारी जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयज़ के हेल्थ है, एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन है, एम्प्लॉय की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चार कोड्स में लेकर के सम्मिलित किया है। और हम स्टेट्स को ये कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हिमाचल गवर्नमेंट ने ये जो कोड्स हैं ये सारे के सारे नोटिफाई कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं। इनमें से दो कोड्स हमने फाइनली जो गजट में नोटिफाई कर दिए हैं और जो और फॉर्मेलिटीज़ है वो हम करने जा रहे हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने, हमने जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत लिमिटेशन थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, हमने जो वुमेंस के वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनके आर्स भी बढ़ाए हैं। एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर हम हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के साधन जो है वो जो है उसमें बनाए जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री है, इन टर्म्स ऑफ लेबर है, या इन टर्म्स ऑफ हेल्थ है, वो हिमाचल गवर्नमेंट जो है समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है। जो पैसा हमको आता है उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट्स जो है वो फ्लरिश तभी करेगा, स्टेट्स प्रॉस्पर तभी करेगा जब हम एक आपस में मिलकर के स्टेट्स है, सेंटर है, उसके अच्छे रिलेशन बने रहे। हमारी ये कोशिश रही है। यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यूनियन के भी लोग आए हैं, आपको भी बधाई दूंगा। आपने भी जो अपने टारगेट्स हैं, आपने भी अपनी जो कोशिशें हैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आपने उस स्कीमों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे हैं, मेरे ख्याल अब आप फैसिलिटेट भी करेंगे, तो मैं आप सबको हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी बधाई दूंगा। हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको एम्प्लॉयज़ को ये कहूँगा, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किसी में भी अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी यूनियन को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हमारे लेबर कमिश्नर हमारे वीरेंद्र शर्मा जी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। मैं सेक्रेटरी में होता हूँ एज लेबर मिनिस्टर, अगर मेरे पास कोई भी आपकी दिक्कत समस्या जो होगी आप मेरे पास आओ, हमारे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों तथा अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए शिमला संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप ने कहा,
2: आज का दिन एक विशेष दिन है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत योग्य कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव बेनिफिट्स देने के लिए हमारे मध्य वर्चुअली जुड़ रहे हैं। मैं विशेष रूप से इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 99,440 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का मकसद अगले 2 वर्षों के दौरान देश में लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 1.92 करोड़ लाभार्थी वे होंगे जो पहली बार नौकरी के लिए मार्केट में कदम रखेंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित हुई नौकरियों पर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से जो भी एम्प्लॉयर्स हैं नौकरियां पैदा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मकसद विनिर्माण सेक्टर पर खास ध्यान देते हुए अलग अलग सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करने का लाभ देना है। यह रोजगार आधारित विकास के जरिए आर्थिक विकास को तेज गति प्रदान करने की दृष्टि से उठाया गया एक अहम कदम है। हम जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद लगातार किस प्रकार से इस देश के जो युवा हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा सके, किस प्रकार से देश का युवा ना केवल अपने लिए रोजगार सृजित करे अपितु रोजगार देने वाला बने, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हम सभी जानते हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके माध्यम से प्रयास किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो यूथ है, यह लक्ष्य है कि इन युवाओं को ना केवल रोजगार उनको मिले अपितु वो लोग अपना कारोबार करके रोजगार प्रदान करने वाला बने। जहां 2014 में मात्र 350 स्टार्टअप होते थे, आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 2.5 लाख हो गई है और करीब 30 लाख युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत जो है इसका लाभ मिला है। आज लगभग 30 लाख नौकरियां स्टार्टअप योजना के माध्यम से देने का काम हमारे युवा साथियों ने ही किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। इस बात को हमने पिछले 12 सालों में देखा भी है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, इस बात की भी हमको खुशी है। और जिस प्रकार से निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे हम विकास की बात करें, विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं आज इस देश में लागू की गई हैं जिनका लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में आज विकास हो रहा है और उसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जो सौगात देने वाले हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देता हूं। जितने भी हमारे बंधुवर पधारे हैं, आप सब लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री हरीश जनार्था माननीय विधायक शिमला शहरी क्षेत्र ने भी इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
3: आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है और इस शुभ कार्य में माननीय प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे उसको सुनने का मौका मिलेगा। और जो ये स्कीम है इसके जो बेनिफिशरीज हैं और इसके जो एम्प्लॉयर्स भी हैं, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एज यू आर ऑल अवेयर दैट दिस इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO रीजनल ऑफिस शिमला to distribute the financial incentives available under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana to the employers and employees. You are already well acquainted with the key features of this scheme. I hope that more employers and employees will benefit from this scheme in the near future, thereby creating numerous employment opportunities within the state. I hope that the EPFO Regional Office Shimla succeeds in effectively implementing this scheme across Himachal Pradesh. I extend my heartfelt best wishes to EPFO Shimla for the successful implementation of this scheme. Thank you.
0: कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा,
4: मैं श्रेया सूद पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वाली युवा पीढ़ी को नौकरी पर रखने से प्रतिष्ठान को जहां उनके युवा कौशल का लाभ हुआ है वहीं उनके रोजगार एवं कार्य प्रणाली में भी स्थिरता आई है जिससे काम को एक निर्धारित अवधि में पूरा करने में सहायता मिली है। जैसा कि इस योजना के तहत लाभ 2 वर्ष की अवधि तक प्राप्त होंगे इसलिए प्रतिष्ठान को नई भर्तियों पर बार बार किए जाने वाले खर्चों की बचत होगी। इस कारण आर्थिक लागत तथा कर्मचारियों के विस्थापन में कमी आई है। नए रोजगार सृजित करने से हमारा प्रतिष्ठान देश में रोजगार बढ़ाने एवं लोगों को रोजगार देने में सफल हुआ है। इस कारण से हम देश की आर्थिकी को रफ्तार देने में सहयोग कर पाएंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मुहिम में योगदान देने में सफल रहेंगे। इस वित्तीय प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।
5: मैं रवीना, मैंने दिनांक 8 सितंबर 2025 को नौकरी ज्वाइन की है। मैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की लाभार्थी हूँ। जैसा कि मैं पहली बार नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ तथा इस योजना के लाभ में मुझे जो राशि मिल रही है उससे मुझे स्थापित होने में बहुत सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभार्थी होने से मुझे एक तो एक ही स्थापना में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और दूसरा नई नौकरी की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी शुरू करने के समय ही इस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलने से मुझे इस समय होने वाले खर्चों को वहन करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार के प्रोत्साहन से मेरे जीवन में स्थिरता आएगी, जिसके कारण मैं अपनी नौकरी के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व को भी पूर्ण रूप से निभा पा रही हूँ। मैं इस योजना के लिए भारत सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: ये थी शिमला के CPRI में आज आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की रेडियो रिपोर्ट। तकनीकी सहयोग रामचंद और प्रवीण, आलेख संपादन एवं स्वर डॉक्टर हुकम शर्मा, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत CPRI शिमला में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
7: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:26:12 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
8: छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता।

उंगली न दबा, छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुप

एक सनम तुझको पसीना आ ही गया, अब दिल की धड़कन न छुपा, सर न झटक आंखें न दिखा, ओ छुप

0: ये तो बता छुपने वाले सामने आ।
1: तुमसा नहीं देखा इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। गीत के लिए संगीत ओपी नैयर का था। चित्रपट संगीत में पुरानी फिल्मों के सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बुढ़ा मिल गया, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। राहुल देववर्मन ने धुन तैयार की है।

रात्रि के 10:34 और 42 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लव इन टोक्यो, लीजिए सुने इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

साल 1963 में आई फिल्म सेहरा का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रामलाल।

सेहरा फिल्म का यह खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में

0: लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के